एफएम 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत

0: किया है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हे भोलेनाथ, आप तो कृपा के सागर हैं।

और आगे सुनते हैं ये देश गान।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना सुधा सिंह, विजय सिंह, चित्रा राव, लता मंगेशकर, शामली और साथियों को FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: कभी आपने सोचा है कि हम खाते क्यों हैं, हम बोलते क्यों हैं, हम सुनते क्यों हैं और हम देखते क्यों हैं? हम खाते हैं जीने के लिए, न कि जिभ्या के स्वाद के लिए। इसलिए जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना। हमें वाणी मिली है एक ऊंचे उद्देश्य के लिए, ताकि सुंदर मधुर शब्द मुंह से निकलें जो कर्णप्रिय हों, ऐसी आश्चर्यजनक दीन का अश्लील, असम्मानजनक, असभ्य शब्दों से पतन क्यों करें? हमें काम दिए गए हैं ताकि संसार के मधुरतम स्वरों का रसास्वादन हम कर सकें, मंद हवा के संगीत को, चिड़ियों के मधुर कलरव को और ईश्वर के मौखिक उपदेश को ग्रहण कर सकें, जो कानों

0: रास्ते हमारे मन की गहराइयों में जाकर हमारे मलिन मन को निर्मल बना सके। इसीलिए कानों से इन्हीं बातों को सुनना है, न कि निम्न और गंदी बातों को। हम देखते हैं ताकि उस विधाता का आभार मान सकें, उसके आभारी हो सकें जो जंगलों और खेतों के वैभव को पैदा करता है, आकाश और सागर में सुसंगति लाता है, जो रात और दिन का मेल बिठाता है। इसलिए इस महान सौंदर्य के होते हुए ऐसी चीज न देखें और न करें जिससे इन इंद्रियों का दुरुपयोग होता हो और हमारे सृष्टा का अपमान होता हो, क्योंकि पंच तत्व से बना ये शरीर क्षणभंगुर है। अतः इन इंद्रियों से किया गया हर कार्य जो सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह भी क्षणिक ही है, पर परिणाम में उसके बल, वृद्धि, तेज, शरीर, आयु, इज्जत तथा परलोक आदि की हानि होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ईश्वर के बनाए हुए गृहस्थ धर्म को त्याग दे और सन्यासी बन जाए, बल्कि उसे यथोचित सांसारिक व्यवहार करते हुए हर समय भगवान के नाम व रूप का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक शरीर का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब प्राण निकल जाएं। हर समय ईश्वर स्मरण करने वाले व्यक्ति को अंतकाल में भगवान की स्मृति स्वाभाविक ही हो जाती है और वो अंत में उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा को पा लेता है। अतः यदि हम परम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी समस्त कामनाओं का त्याग करके इन इंद्रियों से भगवत कार्य करना होगा और अपना समय व्यर्थ न गंवाते हुए उस परमानंद की प्राप्ति के लिए यत्न करना होगा, जो कि हमें उस आनंद घन परम पिता परमात्मा की शरण में जाने पर ही प्राप्त हो सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था इंद्रियों का उपयोग, आलेख प्रमिला हरियाणा और वाचन स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिवजी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिवजी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे सतीश पाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों से पिरोया था ए हरिहरन और साथियों ने FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यक्रम खेती की बातें में। आज का विषय रहेगा फसलों के अवशेषों से बढ़ाएं मिट्टी की उर्वरता, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। सात बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत का।

7:31 का समय रहेगा आपका अपना कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आज ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आनंद लेंगे कार्यक्रम कवि मुख स्वक्रम में कविवर अटल राम चतुर्वेदी के काव्य पाठ का, साथ ही आनंद लेंगे कुछ ब्रज लोकगीतों का। और 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमे। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी वार्ता सनातन संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित माँ गंगा। वार्ताकार होंगे राधा कांत शर्मा। साथ ही 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा। विषय रहेगा पर्यावरण जागरूकता में आपकी भूमिका। आलेख और वाचन डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता का होगा।

ओके से 12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। 12:30 पर आज आप सुनेंगे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे संपत लाल जोशी। बजकर 15 मिनट पर बहनों कार्यक्रम होगा कार्यक्रम वनिता लोग, और 2:30 पर आप सुनेंगे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

नमस्कार 30 मिनट पर कार्यक्रम पर दर्पण में आज आप सुनेंगे अधिक मास का महत्व एवं द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में अधिक मास उत्सव। ज्योतिषाचार्य पंडित अजय तैलंग एवं राकेश तिवारी से भेंट सुनेंगे, साथ ही और सुनेंगे ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित कुछ चर्चाएं कार्यक्रम ब्रज दर्पण में। आप सुनेंगे कार्यक्रम उमंग, 11 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों के झरो।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी। विषय है फसलों के अवशेषों से बढ़ाएं मिट्टी की उर्वरता। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, हमारे देश में फसलों के अवशेषों का उचित प्रबंध करने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, या ये कहें कि इसका उपयोग मिट्टी में जीवांश पदार्थ या नत्रजन की मात्रा बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि दूसरे घरेलू अन्य कामों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि गन्ने की हरी पत्तियां, आलू मूली की पत्तियां पशुओं को खिला दी जाती हैं, गेहूं के डंठल पशुओं को खिलाए दिए जाते हैं या यूं ही फेंक दिए जाते हैं। कपास, सनई, अरहर आदि के तने, गन्ने की सूखी पत्तियां आदि सभी अधिकतर जलाने के काम में लाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एक समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है कि जहां हार्वेस्टर के द्वारा फसलों की कटाई की जाती है, उन क्षेत्रों में खेतों में फसल के तने के अधिकतर भाग खेत में खड़े रह जाते हैं, तथा वहां के किसान खेत में फसल के अवशेषों को आग जला करके नष्ट कर देते हैं। अधिकतर रबी सीजन में गेहूं की कटाई के पश्चात विशेष रूप से देखने को मिलता है कि किसान अपनी फसल काटने के पश्चात फसलों के अवशेषों को उपयोग न करके उसको सीधे सीधे जला देते हैं। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए कई जगह पर तो प्रशासन ने थोड़ी सक्रियता दिखाई है, जिसकी वजह से गेहूं की नरई जलाने पर रोक लगा दी है, लेकिन किसान भाइयों को स्वयं ही समझना होगा, सोचना होगा कि सीधे सीधे ये गेहूं की नरई को आप जला देते हैं खेत में, इससे आपकी जो मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ती है, और जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो इसके जलने की वजह से नष्ट और हो जाते हैं। इसी प्रकार गांव में पशुओं के गोबर का अधिकतर भाग खाद बनाने के लिए प्रयोग न करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि इसी गोबर को यदि गोबर गैस संयंत्र में उपयोग किया जाए तो इससे बहुमूल्य एवं पोषक तत्वों से भरपूर गोबर की स्लैरी प्राप्त करके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। साथ ही गोबर गैस को घर में ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हमारे किसान भाइयों को अपनाना होगा। जमीन में जीवांश पदार्थ की मात्रा निरंतर कम होने से एक तो उत्पादकता हमारी घट रही है, और अगर उत्पादकता घट भी नहीं रही है तो वो एक स्थिर हो गई है, तो ये एक समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने आ रही है, पूरे देश के सामने आ रही है, और इसके लिए जरूरी है कि जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, और ये तभी संभव है कि जब हम अपनी जो फसलों के अवशेष हैं उनमें आग न लगा करके उसको जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के काम में लाया जाए। हमारे देश में हम फसल अवशेषों का उचित उपयोग न करके इसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं, जबकि यदि इन अवशेषों को सही ढंग से खेती में उपयोग करें तो इसके द्वारा हम पोषक तत्वों के बहुत बड़े अंश की पूर्ति इन अवशेषों के माध्यम से कर सकते हैं। फसल के अवशेषों को जो हमारे खेत में रहते हैं उनको बारीक टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला दिया जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। यद्यपि वर्तमान में हमारे देश में भी इस कार्य के लिए रोटावेटर जैसी मशीन का प्रयोग शुरू हो गया है, जिससे खेत को तैयार करते समय एक बार में ही फसल अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाना काफी आसान हो गया है। जिन क्षेत्रों में नमी की कमी हो वहां पर फसल अवशेषों को कंपोस्ट खाद तैयार करके खेत में डालना ज्यादा श्रेयकर रहता है। विकसित देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर इन

0: शेषों को कंपोस्ट बना करके खेत में डालते हैं या इन्हें खेत में अच्छी प्रकार मृदा में मिलाकर सड़ाव की क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर जुताई करते रहते हैं। फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है कि अवशेष जैसे कि गन्ने की पत्तियां हैं, गेहूं के डंठल हैं, को खेत में जलाने की अपेक्षा उनसे हम कंपोस्ट तैयार करके खेत में प्रयोग कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में जहां चारे की कमी नहीं होती है, वहां मक्का की कड़वी है, धान का पुआल है, को खेत में ढेर बना करके खुला छोड़ने के बजाय गड्ढों में कंपोस्ट बना करके उपयोग करना ज्यादा बेहतर रहता है। आलू तथा मूंगफली जैसी फसलों को खुदाई करके बचे अवशेषों को भूमि में जोत देना चाहिए। मूंग और उड़द की फसल में फलियां तोड़ करके खेत में उन्हें मिला देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और वो हमारे खेती के लिए काफी फायदेमंद होगी। फसल की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष घास फूस पत्तियां ठूंठ को सड़ाने के लिए किसान भाई फसल को काटने के पश्चात 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क कर कल्टीवेटर या रोटावेटर से काट कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस प्रकार अवशेष खेत में विघटित होना प्रारंभ कर देंगे तथा लगभग एक महीने में वे स्वयं ही सड़ करके आगे बोई जाने वाली फसल को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी। विषय था फसलों के अवशेषों से बढ़ाएं मिट्टी की उर्वरता, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म वो कौन थी में, और आइए सुनते हैं मुकेश को, फिल्म का नाम है कभी कभी।

इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

अभी आपने सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर को फिल्म स्त्री 420 में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

आशा भोसले मोहम्मद रफी के गाए फिल्म यादों की बारात के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत्य अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राजस्ववाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च

0: प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_ भी उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने महंगाई के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
3: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC, फ्लड PSC, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी

0: तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
2: जैसा कि पिछले दिनों में गर्मी का असर है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी गर्मी का असर बनेगा। उसके बाद जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 28 तारीख से थोड़ा सा जो तराई बेल्ट है सेंट्रल पार्ट में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, तो कहीं ना कहीं अगले 4-5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
0: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
0: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
0: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत हो है हमारो ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: ब्रजबाधरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय मंजुल कुंज निकुंज की रसपुंज विचित्र समाज की जय। यमुना तट की वंशी वट की गिरजेश्वर की गिरिराज की जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रजमंडल की ब्रजराज की जय। पूर्णमयी ब्रज भूमि को सदैव तंडवत नमन वंदन और आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अधिक मास खूब खूब चल रहे हो है। सभी ब्रजवासी अधिक मास को खूब आनंद ले रहे हैं और बाहर से पधारे वाए जो महानुभाव है बहु ब्रजवासी बन के खूब खूब आनंद ले रहे हैं। यह पवित्र पुरुषोत्तम मास को हमारे शास्त्र में विशेष महत्व है और यह मास की जो अधिष्ठात्री देवता है वे हमारे ब्रजाधिपति श्री कृष्ण ही है, या लिए या को विशेष महत्व और बढ़ गयो। या पवित्र पुरुषोत्तम मास को बड़ो ही महत्व है और हम तो सुनो करें कि अधिकस से अधिकम फलम, कितनों जाको जो आनंद मिल जाए। कहूं तट पे बेलन के गुलावन के सुंदर सुंदर बंगला बन रहे हैं, केवड़ा के गुलाब जल के छिड़काव है रहे हैं, खसखाने के पदावली गब रही है, खसके बंगला बन रहे और खूब खूब आनंद छाए रहे हो। गर्मी ते निदान के लिए बहुत बहुत उपाय किए जा रहे हैं, जलन की प्याऊ लग रही है साहब, मीठे शरबत बेल के शरबत खसके शरबत और तो और फालसी को शरबत खूब खूब ब्रजमंडल में बट रहे हो। ब्रज में वास्तवतः बहुत आनंद आ रहा है। सबसे पहले आपको सुनमा में कई मुखसों क्रम में कविवर अटल राम चतुर्वेदी के या काव्य पाठ
1: को महीना है और गर्मी की ऋतु चल रही है तो गर्मी की ऋतु पर आधारित कछु रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। अरे गर्मी की ऋतु आई सभी बेहाल भय, जाओ जहां आप अब मुंह ढके जाइए। गर्मी की ऋतु आई सभी बेहाल भय, यहां जाओ आप अब मुंह ढके जाइए। पेट रिक्त रखनो नाए किंतु भोजन करो कम, आखन पे धूप को चश्मा चढ़ाइए। पेट रिक्त रखनो नाए किंतु भोजन करो कम, आखन पे धूप को चश्मा चढ़ाइए। पानी की खोज में भटक रहे जीव जंतु, छत आंगन द्वार बासन पानी के सजाइए। पानी की खोज में भटक रहे जीव जंतु, छत आंगन द्वार बासन पानी के सजाइए। भरी दुपहरिया अटल बिना बजे निक्रोमती, भरी दुपहरिया अटल बिना बजे निक्रोमती। माथो रख ठंडो दिना गर्मी के बिताइए, माथो रख ठंडो दिना गर्मी के बिताइए। हर जहां जाओ वहां देखो हाय हाय मच रही, गर्मी के मारिन को कहूं चैन नाए। यहां जाओ वहां देखो हाय हाय मच रही, गर्मी के मारिन को कहूं चैन नाए। गरम गरम लू चले धरती हूँ गरम भई, गरम गरम लू चले धरती हूँ गरम भई। गरम जल गरम तन कहो कहाँ जाए, गरम गरम लू चले धरती हूँ गरम भई, गरम जल गरम तन कहो कहाँ जाए। दिनन की तो छोड़ दो रातन में नींद नाए, अरे दिनन की तो छोड़ दो रातन में नींद नाए। वह जो पसीना बिस्तर चिपक के सताए, दिनन की तो छोड़ दो रातन में नींद नाए। वह जो पसीना बिस्तर चिपक के सताए, पैरों में जेठ जी को अटल नाए भावे अब, पैरों में जेठ जी को अटल नाए भावे अब। नेक तो

ठेठ को महीना सवे डट के सतावे गो तपे बैसाख में जित्ते जी ओ बढ़ के तपावे गो तपे बैसाख में जित्ते जी ओ बढ़ के।

बे सूरज गरमाए रहो है और सवन है चंदा की शीतलता की याद आवे। तो चंदा ते सब करे मोहब्बत, सूरज तो गरमावे गो। चंदा ते सब करे मोहब्बत, सूरज तो गरमावे गो। ओ ताप

सूरज हथे आग को गोला अपनो ताप दिखावत है। सूरज हथे आग को गोला अपनो ताप दिखावत है। थोड़ी देर सह सको जाकू नाए अधिक पर भामत है। थोड़ी देर सह सको जाकू नाए अधिक पर भामत है। जाकू अर्घ दे या पूजो शीतलता नहीं लावेगो। जाकू अर्घ

दया कर, थपकी दे के हमें सुभावे, जो सुख चंदा दे सोवे को, जो सुख चंदा दे सोवे को।

ता सो रख के सब के प्रिय बन जाओगे। आग उगल के तुम सूरज सी कहो कौन कुंभाओगे। आग

दूर हटेंगे देख तुम्हें सब, कौन तुम्हें अपनावे गो। दूर हटेंगे देख तुम्हें सब, कौन तुम्हें अपनावे गो। चंदा ते सब करें मोहब्बत, सूरज तो गर्मावे गो। अत की गर्मी बहुत बुरी है, चो चाहो सूरज बननो। अत की गर्मी बहुत बुरी है, चो चाहो सूरज बननो। जा मैं चंदा सी नर माई, सबके संग बुई निभनो। जा मैं चंदा सी नर माई,

0: एगो कछु दोहा गर्मी के रुत पे आपके सरमुख पस्तोते हैं। गर्मी में जब काऊ को जी अत को घबराए, गर्मी में जब काऊ को जी अत को घबराए, कछ ठंडो सो याए दो जे सुंदे में आए। गर्मी में जब काऊ को जी अत को घबराए, कछु ठंडो सो याए दो जे सुंदे में आए। ठंडो पानी घड़ा को फ्रिज पो पी लो, ठंडो पानी घड़ा को फ्रिज को पी लो, पर गर्मी की रोक पे ध्यान आप सब दो। कोल्ड ड्रिंक पी लो पर कहें करे नुकसान, कोल्ड ड्रिंक पी लो पर कहें करे नुकसान, और गन्ना को रस भलो है काम करे आसान। कोल्ड ड्रिंक पी लो सब कहें करे नुकसान, गन्ना को रस भलो है काम करे आसान। मिल्क शेक और छाछ हैं सेहत को अनुकूल, मिल्क शेक और छाछ हैं सेहत को अनुकूल, जो गर्मी में लियो तो बर्फ न जइयो भूल। मिल्क शेक और छाछ हैं सेहत को अनुकूल, जो गर्मी में लियो तो बर्फ न जइयो भूल। ठंडा ही सबते भली तन को तर कर जाए, ठंडा ही सबते भली तन को तर कर जाए, पीस पीस मेवा सभी लीजे दूध मिलाए। ठंडा ही सबते भली तन को तर कर जाए, पीस पीस मेवा सभी लीजे दूध मिलाए। लस्सी शरबत जूस में बर्फ कूट के डार, लस्सी शरबत जूस में बर्फ कूट के डार, अटल सिकंजी पनो पी गर्मी कूद है मार। लस्सी शरबत जूस में बर्फ कूट के डार, अटल सिकंजी पनों पी गर्मी कूंद है मार।
1: तो भैया अभी आपने आनंद लियो कवि मुख सो क्रम में कवि वर अटल राम चतुर्वेदी के या काव्य पाठ को। भैया वस्तुतः यह देखो मास जो चल रहे हो है, या मास में पूरे साल के उत्सव हमारे ब्रज के देवालयन में मंदिरन में ब्रजवासीन के घर घर देखे जाएं। और कहूं कहूं मंदिर में आप जाओ तो राय वेली मोंगरा मोतिया बेला गुलाब चमेली सुंदर सुंदर फूलन के बंगला फूल मंडली खस को बंगला। कहूं कुंज की खस बन रही है, कहूं जतून के दर्शन है रहे, कहूं वहां उस समय दान लीला देखने को मिल रही है, कहूं घटान के दर्शन है रहे। अधिक मास के दिन में सबको ब्रज की छटा खूब खूब देखने को मिले। और हम तो एक ही बात जाने, धन्य यह लोक धन्य।

वृंदावन। यमुना निकटवर पीपर छाई, धन्य यह गोपी ग्वाल, धन्य यह सब सखा संग, धन्य वन तहां धेनु चराई। धन्य यह पावन शीतल सुगंध मंद, धन्य मुरली जिन श्याम बजाई, चतुर बिहारी गिरधारी प्रिय प्यारी, ब्रज की भूमि मानो वानिक बनाई। यह ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है, प्रेम रूप रस दंपत लीला, यह तिनको नित भोग। कहूँ सतुआ के दर्शन है रहे साहब, कहूँ फालसे के मुरब्बा बांटे जा रहे, और प्रेम की बात है। कल ले नेम छेम जो चाहे, या जग में प्रेम रतन है सार। सुनो रसिया को, स्वर है राम स्वरूप शर्मा को।

कर ले नेम छेम जो चाहे, या जग में प्रेम रतन है सार। अब भाई ये सुंदर नसिया गायो स्वामी राम स्वरूप शर्मा ने। भैया या ब्रज में वास्तव तो खूब प्रेम है, हमारे ब्रजवासी तो कहूँ कहूँ प्याऊ लगा रहे हैं साहब, शरबत की लगा रहे हैं, कहूँ बेलन की, कहूँ फाल सेब की, अरे सुंदर सुंदर हम तो रोज देख रहे हैं, केवड़ा के खस के खूब शरबत बट रहे हैं। ये हमारे ब्रजवासी को बड़ो प्रेम है, और हमारे ब्रजवासी तो एक ही बात कहें कि या समय छाछ के दर्शन, दही के दर्शन हमारे ब्रजवासी को खूब आनंदित करें। और ग्वालनी मीठी तेरी छाछ, कहा दूध में मेल जमायो, सांची कहो किन बात, और वहां कित वो तेरो पहुँच चलत है आज, ऐसो टक चक कबू ना देखो तो जो रही कचु छाछ। ग्वालनी मीठी तेरी छाछ, सुनो या लोकगीत को।

मीठी छाछ पे वायदे प्यारी मन भर के मदन मोहन ब्रजवासी ने जे गायो सुंदर सो लोकगीत। और हमारे ब्रजवासी तो एक बात कहें, आछे बने हो देखो मदन गोपाल और परमानंद प्रभु यही रहो ब्रजते और नहीं चाल। यही के संग अपने ब्रज सेवक मयूर कौशिक को अनुमति प्रदान करो। सब ब्रजवासी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए

0: जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजाति सांस्कृतिक समागम में कही।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
5: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडप में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार

0: पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
4: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए। तो हम इस अभियान में

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कार्यक्रम गीतांजलि में कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म फर्ज से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी की।

मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म द ट्रेन में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म ब्लैकमेल के संगीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता, सनातन संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित माँ गंगा। वार्ता कर रहे हैं राधाकांत शर्मा।
1: दशहरा भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति का विशेष पर्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को ही पतित पावनी माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। दशहरा का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाला दिन। इस दिन माँ गंगा की आराधना, पूजा अर्चना व उसमें स्नान करने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिमालय की गोद से निकलने वाली पतित पावनी माँ गंगा अपनी 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए बंगाल की खाड़ी में सागर में मिलती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि प्रांतों के करोड़ों लोगों के जीवन यापन, कृषि और विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है। गंगा कहने को तो सिर्फ एक नदी है, परंतु यह असंख्य सनातन धर्मावलंबियों की गहरी आस्था और अटूट विश्वास का प्रतीक है। सनातन धर्म और भारतीय वैदिक संस्कृति में माँ गंगा को अत्यंत पवित्र और पूज्य माना गया है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, वाल्मीकि रामायण और महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में माँ गंगा के दैविक स्वरूप की अत्यंत महिमा बताई गई है। धार्मिक ग्रंथों में माँ गंगा का उद्भव सतयुग में वामन अवतार के समय, जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए विराट रूप धारण किया था, तब उनका एक पांव ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उसी क्षण ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल के जल से भगवान विष्णु के चरण धोए थे। ये भगवान के चरणों का जल ही माँ गंगा के रूप में परिभाषित हुआ। ब्रह्मा ने पुनः इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। एक कथा के अनुसार माँ गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री थीं, किंतु उनका पालन पोषण स्वर्ग में हुआ, इसलिए उन्हें सुरसरी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा विस्तार से बताई गई है। कहा जाता है कि त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा सगर हुए। उनकी दो रानियां थीं, जिनमें एक रानी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए और दूसरी रानी केशनी के गर्भ से केवल एक पुत्र असमंजस हुआ। राजा सगर ने पृथ्वी विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके नियमानुसार यज्ञ के अश्व को खुला छोड़ दिया जाता है और जहाँ भी जिस नगर या राज्य से होकर वो अश्व जाता है, वहाँ के राजा को या तो उनकी अधीनता स्वीकार करनी होती है या उनसे युद्ध करना होता है। यज्ञ के अश्व के पीछे पीछे राजा सगर की विराट सेना चल रही थी।

थी। राजा सगर के प्रताप से खिन्न होकर देवराज इंद्र ने उनके यज्ञ के अश्व को अपनी माया से चुराकर पाताल लोक में महर्षि कपिल देव के आश्रम में बांध दिया था। महर्षि कपिल देव, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उस समय कठोर साधना में लीन थे। राजा सगर की सेना को जब यज्ञ का अश्व कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने वापस राज्य लौटकर राजा को अश्व चोरी होने का समाचार दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ का अश्व खोज कर लाने भेजा। संपूर्ण पृथ्वी पर खोजने के बाद भी जब यज्ञ का अश्व नहीं मिला तो देवऋषि नारद के बताने पर उन्होंने पाताल लोक में उसकी खोज की, जहां भगवान कपिल देव के आश्रम में यज्ञ के अश्व को बंधा देखा तो उन्होंने महर्षि कपिल देव का उपहास और अपमान करना प्रारंभ किया, जिस पर क्रोधित होकर उन्होंने सभी को अपने तपोबल से भस्म कर दिया। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के समस्त पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगीं। समय बीतने के बाद जब सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज में भेजा। अंशुमान जब कपिल देव के आश्रम में पहुंचे तो वहां अपने 60,000 पूर्वजों की भस्म देखकर बहुत दुखी हुए और कपिल देव की स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि कपिल देव ने माँ गंगा के जल से उनके सभी पूर्वजों की मुक्ति का उपाय बताया। अंशुमान महर्षि कपिल देव की बात सुनकर माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए हिमालय पर तपस्या करने चले गए। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को लाने के लिए कठोर तप किया, जिसके बाद दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर जाने को कहा। तब माँ गंगा ने उनसे ये कहा कि उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी पर गिरते ही वो रसातल में चली जाएंगी और उनके पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तब ब्रह्मदेव के कहने पर राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे गंगा के प्रचंड वेग को अपने शीश पर धारण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने राजा भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को अपने शीश पर धारण कर अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। भगवान शिव का स्पर्श प्राप्त करके गंगा और अधिक पवित्र होकर सप्त धाराओं में विभाजित हो गईं, जिनमें अलकनंदा, मंदाकिनी, विष्णु गंगा, नंदाकिनी, कर्ण गंगा आदि हैं, जो आगे चलकर गंगा नदी में ही समाहित हो जाती हैं। माँ गंगा की एक मुख्य धारा जो राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी थी वो भागीरथी कहलाई। राजा भगीरथ जिस मार्ग से होकर जा रहे थे, माँ गंगा भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। इसी मार्ग पर परम तपस्वी महर्षि जन्नू ऋषि का आश्रम था, जहाँ वे भगवत साधना कर रहे थे। इस कारण राजा भगीरथ ने माँ गंगा से अपने मार्ग को परिवर्तित करने का आग्रह किया, किंतु माँ गंगा का वेग बहुत तेज होने के कारण उन्होंने महर्षि जन्नू के आश्रम को जलमग्न कर दिया और उनकी साधना भंग हो गई। इस पर उन्होंने क्रोधित होकर माँ गंगा के समस्त जल को अपनी साधना के बल से पी लिया। यह देखकर भागीरथ बहुत दुखी हुए और उन्होंने महर्षि जन्नू को गंगा के पृथ्वी पर आने का कारण बताया, साथ ही उनसे गंगा को वापस लौटाने का आग्रह किया। तब महर्षि जन्नू ने गंगा को अपनी जंगा से बाहर निकाला, इसलिए माँ गंगा को जानवी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए माँ गंगा भगवान कपिल देव के आश्रम पहुंची, जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म हुए शरीर की राख को अपने पावन जल से स्पर्श करके उन्हें मुक्ति प्रदान की। गंगा द्वारा मुक्ति पाकर राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों ने देव रूप धारण कर स्वर्ग को प्रस्थान किया। माँ गंगा ने राजा के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, इसीलिए उन्हें मोक्षदायिनी, पतित पावनी और कलमल हरनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में सतयुग, त्रेता और द्वापर के साथ साथ कलयुग में भी माँ गंगा का अत्यधिक धार्मिक महत्व बताया गया है। यह एकमात्र वो नदी है जो स्वर्ग पृथ्वी के साथ साथ पाताल लोक में भी बहती है। तीनों लोगों को अपने निर्मल जलधारा से पावन करने वाली माँ गंगा को त्रिपतगा भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन समस्त सनातन धर्मावलंबी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयागराज और गंगा सागर आदि गंगा घाटों पर जाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के पश्चात कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दूर्वाकुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों, साधु संत

0: पीड़ितों, दीन दुखियों और जरूरतमंदों को सामर्थ्य अनुसार 10 प्रकार की वस्तुएं, जैसे हाथ से बना बीजना, मटका, सुपारी, सत्तू, मौसमी फल और वस्त्र आदि का दान करने से बहुत पुण्य मिलता है, जिससे व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव पूजा और तर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। गंगे दशहरा के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी असमर्थता के कारण अगर गंगा घाट नहीं जा पाता तो उसे यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु कावेरी और सरयू आदि पवित्र नदियों में अथवा घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर ओम नमो गंगाए गंगे ते नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए, जिससे उसे गंगा स्नान के बराबर ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन समस्त सनातन धर्मावलंबियों में गंगा स्नान के प्रति इतना उत्साह होता है कि गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, कर्णवास, रामघाट, नरोरा, काशी प्रयागराज व गंगा सागर आदि गंगा घाटों पर समूचे देश के अलावा विदेशों से भी भक्त श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में यहाँ आते हैं और गंगा में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। वस्तुतः यह कहना गलत नहीं होगा कि हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ, जहाँ पतित पावनी माँ गंगा और यमुना जैसी सैकड़ों जीवनदायिनी पवित्र नदियाँ हैं जो हमें अपने निर्मल जल के माध्यम से जीवन प्रदान करती हैं। इसीलिए हमारा भी ये विशेष कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने देश की जीवन रेखा कही जाने वाली इन समस्त नदियों को स्वच्छ, सुरक्षित और पवित्र रखें, इनको अशुद्ध व विलुप्त होने से बचाएं, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यह दिव्य संपदा सौंप कर जाएं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचा कर रखी हैं। क्योंकि हमें यह भी ज्ञात रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण, भविष्योत्तर पुराण और श्रीमद् देवी भागवत में पृथ्वी लोक से माँ गंगा के लोप होने की बात भी कही गई है। इन ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद माँ गंगा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और कलयुग के अंत तक जब धरती पर पाप, छल और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाएगा तथा लोगों के मन में गंगा स्नान के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी, तब माँ गंगा पृथ्वी लोक को छोड़कर वापस स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएंगी। जरा सोचिए, यदि गंगा जैसी पवित्र और जीवनदायिनी नदियाँ यदि इस पृथ्वी से विलुप्त हो गईं, तो क्या होगा? नदियों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। यदि नदियाँ नहीं होंगी तो पीने का पानी, खेती के लिए सिंचाई, विद्युत उत्पादन और उद्योगों के लिए जल का मुख्य स्रोत खत्म हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में भयंकर सूखा, अकाल पड़ जाएगा, साथ ही भूजल समाप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही भयावह होगा। इसीलिए एक विकासशील और संपन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए इन नदियों को स्वच्छ और जीवित रखना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए हमारे देश की सरकारें भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही हैं, जिसके अंतर्गत इन नदियों को स्वच्छ रखने और विलुप्त होने से बचाने के लिए नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान और राज्य विशिष्ट नदी पुनर्जीवन अभियान आदि विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। शासन द्वारा संचालित की जा रही इन समस्त परियोजनाओं का मंथन भी यही है कि हम विकास को भी प्राप्त करते रहें और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ व सुरक्षित रहे। यह तभी संभव है जब गंगा यमुना जैसी अविरल बहने वाली पवित्र नदियों का निर्मल जल कल कल करके बहता रहे, क्योंकि गंगा जैसी नदियां ही पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र की जीवन रेखा हैं। ये प्राकृतिक जल चक्र को बनाए रखने, जैव विविधता को आश्रय देने, कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी के निर्माण और जल को शुद्ध करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, सनातन संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित माँ गंगा। वार्ताकार थे राधाकांत शर्मा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

और एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, वंदितालो कार्यक्रम में हेलो सहेली कार्यक्रम आज यानी कि सोमवार 25 मई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भाधान की समस्या, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर स्वरांगना।

0: अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भाधान की समस्या कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है गर्भाधान की समस्या कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप स्त्री संबंधी रोग जैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी, पेल्विक दर्द, यूरिनरी की समस्या, यूटीआई, पीसीओएस, पांचपन आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर सौरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा आज सोमवार 25 मई 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 41 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शासन ने बजट आवंटित किया है। इस धनराशि से प्रशासन ने जिले के तीनों रोडवेज बस स्टॉप पर दो दो कूलर लगवाए हैं। इसके साथ ही गुड़ और ORS की व्यवस्था भी की गई है। आम जनता की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ भी लोगों को शीतल जल के साथ साथ गुड़, पेठा और गट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी मोहन अग्नोत्री ने बताया कि लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
3: जनपद कन्नौज में रोडवेज बस स्टैंड कन्नौज, गुरसहायगंज और छिबरामऊ, तीन जगहों पर हम लोगों ने दो दो बड़े कूलर लगवाए हैं। साथ ही साथ इन जगहों पर गुड़, पानी और ORS के पैकेट भी रखे गए हैं। नगर निकाय की ओर से इसमें कर्मचारी भी लगाए गए हैं। 24 घंटे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जो नागरिक आते हैं वो बुला करके और हम लोग देख करके उनको स्वच्छ पेयजल भी देंगे, साथ ही साथ उनको ORS के पैकेट भी रहेंगे। इस समय चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, नागरिक सुरक्षित रहें, वो जागरूक रहें और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए इस प्रकार की की जा रही हैं।
2: कन्नौज जिले में इस प्राय अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जनपद के 11 चयनित विद्यार्थियों में निहित वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को सराहा जा रहा है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के रूप में साकार कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। जिला प्रशासन विद्यार्थियों के अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। कन्नौज जिले में संसाधनों का सम्मान अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पाने पर सूचना कमांड सेंटर 1077 पर दें। दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थानों पर बहता पानी, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में अनावश्यक रूप से जल रही लाइटें, जागरूक नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना मजबूत हो सके। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि संसाधनों की बचत केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जन सहभागिता से ही जिले को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। कन्नौज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शिवरामऊ में 100 और उमरदा में 116 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तकनीक से सशक्त होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाएं मात्र शिशु पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सेवाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा सकेंगी। यह पहल सहायिकाओं के उत्साहवर्धन के साथ आंगनबाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण और सुदृढ़ क्रियान्वयन की दिशा में एक सार्थक सिद्ध होगी। कन्नौज जिले में वेटलैंड के संरक्षण के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में इस्माइलपुर, रोंसा और निघो खास में एवं असेह में स्थित वेटलैंड को अधिसूचित किए जाने का काम शुरू हो चुका है। आर्द्रभूमि शक्तिशाली कार्बन सिक है, जो किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिलती है। जनपद में 100 वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं। इन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना

0: लागू होगी। योजना को साकार करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वर्तमान में करीब 1,00,000 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें नई व्यवस्था के तहत रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार स्थायी आजीविका और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। योजना के तहत श्रमिक परिवार की महिला सदस्य को जॉब कार्ड में शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद में 25,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है। मजदूरी का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। पुराने 100 दिनों के प्रावधान के बजाय अब हर ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीकी विशेष सुविधा होगी। हर गांव में विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार होगा। ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर विकसित कार्य होंगे। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 51 परिवारों को 1,97,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता को शासन ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त बजट के सापेक्ष पात्र दावेदारों को जल्द आर्थिक सहायता मिलेगी।
1: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
2: पीलीभीत जिले में इस समय भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में अवकाश कर दिया गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गर्मी से बचाव हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाए हैं और पानी की व्यवस्थाएं की हैं। जितने वाटर कूलर थे नगर पालिकाओं के टाउन एरिया के, वो हम लोगों ने सही कराए हैं और निर्देशित किया सभी ईओ को कि वो एक बार चेक कराने जो जो वाटर कूलर शहर में लगे हुए हैं उनमें प्रॉपर पानी आ रहा कि नहीं आ रहा है, और खासतौर से बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्थाएं कराएं। और ग्राम प्रधानों से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो गांव में भी देख लें कि कोई भी जानवर प्यासा ना रह जाए। इसलिए जो भी तालाब है हमारे और सार्वजनिक स्थान है जो ग्रामीण क्षेत्र उनकी भी।
2: गर्मी का असर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। बाघ हिरण आदि जीव जंगल से बाहर खेतों व सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्य जीवों की प्यास बुझाने हेतु सभी ताल पोखरों को नहर व नालों के जरिए भरवाने की व्यवस्था की है। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि जंगल के बीच कई तालाबों को सौर ऊर्जा 40 पंपों से भी भरा जा रहा है। पीलीभीत में एक जनपद एक नदी योजना के तहत गोमती व खन्नौर नदियों का पुनरोद्धार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक बाबूराम पासवान व स्वामी प्रवक्तानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इस नेक कार्य में योगदान दे रहे हैं। बाघ और बांसुरी के साथ पीलीभीत की पहचान बासमती उत्पादन के लिए भी है। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से अब बासमती की महक और बढ़ने जा रही है। जिले में बासमती बीज उत्पादन शोध व निर्यात केंद्र की स्थापना करोड़ों की लागत से कराई जा रही है। इस केंद्र को 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित कराने के अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा,
4: ये जो बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन का पार्क जो बनेगा, ये इस क्षेत्र के लिए मेरे लिए कहने की मुझे गर्व महसूस होता है कि ये पीलीभीत जनपद बांसुरी के लिए जाना जाता है। ये पीलीभीत जनपद यहाँ के प्राकृतिक धरोहर जंगल है, यहाँ के शेर है, उसके लिए जाना जाता है। मगर आने वाले समय में ये बासमती चावल का जो कटोरा है उसके लिए जाना जाएगा।
2: पीलीभीत जिले में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने जिले की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था को सामान्य व नियंत्रण में बताया है। उन्होंने लोगों से डीजल पेट्रोल व कुकिंग गैस की अनावश्यक खरीद व भंडारण से बचने को कहा है। पीलीभीत जिले में पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत भजन कीर्तन यज्ञ व भंडारों जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तकिया दीनारपुर स्थित महाकाली मठ व पीताम्बरा पीठ पर महंत बाबा सूरजगिरी जी द्वारा सचंडी महायज्ञ कराया गया। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर मंदिरों पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा व भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। पीलीभीत में इस समय साठा धान व गन्ने की फसल खेतों में हरियाली बिखेर रही है। गन्ने की उपज का सर्वे गन्ना विकास विभाग द्वारा शुरू करा दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया,
5: वर्तमान में गन्ना सर्वे का काम चल रहा है। पूरे जनपद में 144 टीमें बनी हुई है और ये 144 टीमें जनपद की चीनी मिलें और जो जनपद से बाहर की चीनी मिले हैं उनका गन्ना सर्वे कर रही है। गन्ना सर्वे का काम गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और मझोला के द्वारा की जा रही है। सभी जो किसानों का सर्वे होना है वो 30 जून तक सर्वे होना है। 1 मई से सर्वे की शुरुआत हुई थी और 30 जून तक गन्ना सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाना है।
2: पीलीभीत जिले में जनगणना

0: 2027 के तहत इस समय मकानों की गिनती का कार्य तेजी से चल रहा है। 7 से 21 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से सुगणना की गई और अब गणना कर्मी घर घर जाकर गणना कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कई जगह इसका निरीक्षण भी किया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
3: प्रकृति अत्यंत विशाल तथा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यह प्राचीन काल से ही मनुष्य की हर आवश्यकता की पूर्ति निस्वार्थ भाव से करती आ रही है। पृथ्वी के गर्भ में अथाह ऊर्जा भंडार है। यदि मनुष्य बिना लोभ लालच के योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करता रहे तो प्रकृति वर्षों तक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। परंतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बड़ी बेरहमी से तथा अविवेक पूर्वक कर रहा है, जिससे ऊर्जा संसाधनों का दुरुपयोग तो होता ही है, साथ ही प्राकृतिक संतुलन नष्ट होकर मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आज जबकि संपूर्ण विश्व पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के बारे में चिंतित है, देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस ज्वलंत समस्या के बारे में स्वयं जागरूक बने और पर्यावरण संरक्षित रखने में अपना सक्रिय योगदान करे। अपने पड़ोस, स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल के लोगों का पर्यावरण क्लब या मंच बनाएं, जिसमें समय समय पर सामाजिक पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा करें। प्राथमिकता के आधार पर किसी पर्यावरणीय प्रायोजना पर काम भी प्रारंभ कर सकते हैं। ऑफिस, शिक्षण संस्था, मंदिर अथवा सार्वजनिक स्थान के नोटिस बोर्ड पर समाचार पत्रों की पर्यावरणीय समाचार वाली कतरने लगावें तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार बदलते रहें। इससे लोगों में पर्यावरणीय विषयों के बारे में रुचि बढ़ेगी। आप जब रेलगाड़ी या बस में सफर कर रहे हों, मूंगफली या केले आदि खाकर छिलके वाहन में फर्श पर न फेंकें। इससे वाहन में गंदगी तो फैलती है, साथ ही आपका कोई सहयात्री केले के छिलके से फिसलकर गिर भी सकता है। छिलकों या अन्य व्यर्थ पदार्थों को कागज की थैली में इकट्ठा करें तथा यात्रा समाप्ति पर उपयुक्त स्थान पर डालें। रेलगाड़ी, बस अथवा सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई धूम्रपान करता है तो उसे सम्मानपूर्वक मना करें। नहीं मानने पर जनमत तैयार कर संगठित रूप से विरोध करें। इसे रोकने के लिए कानूनी प्रावधान भी है। जब कमरों में कोई न हो, अनावश्यक रूप से टीवी, लाइट, पंखे आदि चलते हुए न छोड़ें। बल्ब की जगह ट्यूबलाइट व CFL काम में लें। अवसर मिलने पर वृक्षारोपण करें तथा दूसरों को भी वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित करें। याद रखें, वृक्ष लगाने के साथ साथ लगे हुए वृक्षों का संरक्षण भी आवश्यक है। कभी प्रकृति से अपने संबंधों के बारे में पूछें। यह सुंदर विश्व, यह प्राणदायिनी पर्यावरण आपकी बपोती नहीं है, वरन हमें पूर्वजों द्वारा दी गई अमानत है। हमें भी इसे सहज कर आने वाली पीढ़ी को सौंपना है, अर्थात हमारे पास उधार ली गई मूल रकम की भांति है। इसका संरक्षण हमारा पवित्र कर्तव्य है। कभी आत्मावलोकन करें, अपने आप से पूछें, मैंने प्राकृतिक संसाधनों का कहां कहां तथा किस प्रकार दुरुपयोग किया है। मैंने पृथ्वी, जल, हवा को कहां कहां तथा किस प्रकार प्रदूषित किया है। मैंने किस प्रकार निरीह जीव जंतुओं के आवासों को नष्ट किया है। यदि कहीं सार्वजनिक पाइपलाइन टूटी हुई है, लीक कर रही है, कहीं गंदगी का ढेर या मरा हुआ मवेशी पड़ा सड़ रहा है, तो इस प्रकार की स्थानीय समस्याओं के बारे में सक्षम अधिकारियों से बात करें। निवारण न होने पर समाचार पत्रों के माध्यम से आवाज बुलंद करें, अधिकारियों व जनता का ध्यान आकर्षित करें। सामान्यतया आदमी सोचता है कि इतने बड़े राष्ट्र एवं विश्वव्यापी अभियान में मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। याद रखिए, आप अच्छा या बुरा जो भी करते हैं, राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था पर्यावरण जागरूकता में आपकी भूमिका, आलेख और वाचन था डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन, ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, कोई शिक्षक हो, कोई गृहिणी हो या फिर कार्यालय में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी। लेकिन एक बात हमारे जीवन को आसान बना सकती है और कठिन भी, और वो है हमारा काम करने का दृष्टिकोण। यदि हम अपने कार्य को बोझ समझते हैं तो छोटा सा काम भी हमें पहाड़ जैसा लगने लगता है, लेकिन जब वही कार्य हम प्रसन्नता से और उत्साह के साथ करते हैं तो कठिन रास्ते भी हमें आसान लगने लगते हैं। इसको लेकर एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार दो मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने पहले मजदूर से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो उदास होकर बोला, देखते नहीं, दिन भर पत्थर तोड़ रहा हूँ, बस यही मेरी मजबूरी है, यही काम करना पड़ रहा है। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे मजदूर से वही प्रश्न पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक सुंदर सा मंदिर बना रहा हूँ। दोनों का काम एक ही था लेकिन सोच अलग थी। पहला व्यक्ति काम को बोझ समझ रहा था जबकि दूसरा अपने कार्य में खुशी और उद्देश्य खोज रहा था। श्रोताओं, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम अपने काम को सम्मान देते हैं, उसमें आनंद ढूंढते हैं, तब थकान भी हमको महसूस नहीं होती और सफलता भी हमें जल्दी मिलती है। विद्यार्थी यदि पढ़ाई को बोझ समझेगा तो किताबें भारी लगेंगी, लेकिन यदि वह ज्ञान पाने की खुशी से पढ़ेगा तो वही पढ़ाई उसके सपनों का रास्ता बनाएगी। घर का काम हो या नौकरी, हर कार्य का अपना महत्व होता है। काम छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सोच उसे बड़ा बनाती है। तो आइए हम भी इस बात को अपने जीवन में अपनाएं कि हम अपने कार्य को खुशी, लगन और सकारात्मक सोच के साथ करें, क्योंकि प्रसन्न मन से किया गया कार्य केवल सफलता ही नहीं देता बल्कि हमारे जीवन को संतोष और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय अधिक मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने का हमारे सनातन धर्म में आध्यात्मिक व ज्योतिष की दृष्टि से विशेष महत्व है, जिसके बारे में आज हमें जानकारी दे रहे हैं श्री द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा से ज्योतिषाचार्य पंडित अजय तैलंग जी।
1: देखिए, ये मास जो है बहुत ही प्रबल मास है। ये भगवान विष्णु का मास है, गोलोकवास भगवान श्री कृष्ण का मास है। जब एक चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति

ईएम नहीं होती है तब ये मास अधिक मास कहलाता है, और ये 3 वर्ष में एक बार आता है, और ये लगभग 32 महीने 16 दिन बाद इसका आगमन होता है। ये धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसको मलमास के रूप में भगवान ने इसका नाम पुरुषोत्तम मास रखा है, और इस पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी के निमित्त जितने भी मनोरथ आदि होते हैं, साल भर में जितने भी मनोरथ आते हैं वो इस मास में किए जाते हैं, क्योंकि जब संक्रांति टूट जाती है तो वो महीने में रहने वाले मास टूट जाते हैं, और उसमें जो धार्मिक कृत्य होते हैं वो भी उस समय नहीं होते हैं, तो साल भर में जो भी ये मनोरथ होते हैं वो सब मनोरथ इसमें लौट कर आते हैं। जैसे कहते हैं कि ये मास जो है अलग अलग मासों पड़ता है, अब के ये जो मास पड़ा है ये अब के जेठ में पड़ा है, जेठ का महीना है उसमें पड़ा है, पहले ये वैशाख में पड़ा था, ये उल्टा लौटता है। तो ये 17 मई से इसका आगमन हुआ था, और ये लगभग जो है 15 जून तक ये चलेगा। इस पूरे मास में अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति और शुक्र से संबंधित जो धार्मिक कृत्य हैं, जैसे विवाह शादी आदि, यज्ञों पर भी संस्कार आदि, वो इसमें वर्जित होते हैं, परंतु प्रभु से संबंधित जिसमें जप तप दान पूजा भगवत श्रवण ये आदि जो कर्म है ये बहुत होते हैं और लोगों को करना चाहिए। इसमें 33 वस्तुओं का दान होता है, कास पात्र का दान होता है, लेई चोस पदार्थ यानी कि मालपुआ का बहुत विशेष इसमें दान है, जिसमें छेद होते हैं मालपुआ, इसका दान होता है, कांसे की थाली में रख के 33 पुओं का दान होता है, रोज नित्य प्रतिदिन भले वो पुष्टि मार्ग मंदिर हो भले अन्न मार्ग के मंदिर हो, वे सभी लोग इसमें दान पुण्य करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। आज भी हमारे वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे यहाँ के गोस्वामी बालक हैं, अन्य समाज के लोग हैं, वो अपने नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करने के पूर्व, भोजन करने से पूर्व रोज जो मिष्ठान है उसका दान करते हैं। अब जैसे हम बात करें तो हमारे सबसे बड़े जो ब्रज का मंदिर है वो द्वारकाधीश मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, मथुराधीश का मंदिर है, ये पुष्टि से जुड़े हुए मंदिर हैं। यहाँ भी आज गोस्वामी बालक बिराज रहे हैं, वो ठाकुर जी का नित्य प्रतिदिन एक थाली का दान करते हैं, कहीं कहीं 33 थाली का दान होता है, कभी पुओं का दान, कभी बर्फी का दान, कभी बेसन के लड्डू का दान, कभी मठरी का दान, ये रोज नित्य प्रतिदिन मिष्ठान का दान होता है, वस्त्र इत्यादि का दान होता है, गरीब फकीर को खाने की वस्तु का दान होता है, और ये दान करने से अक्षय प्राप्ति मिलती है। साथ ही विभिन्न मनोरथ, अब ग्रीष्मकालीन जो चल रहा है जेठ का महीना, इसमें ठाकुर जी की फूल मंडली, नौका विहार, ठाकुर जी के विशेष छाक का मनोरथ, फूल मंडली, आपके हिंडोला आदि, पलना आदि, नंद महोत्सव, जो साल में जितने भी महोत्सव आते हैं वो ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए सब मंदिर देवालय में होते हैं। जगह जगह धार्मिक कृत्य होते हैं, श्रीमद् भागवत आपने देखी होगी, चारों ओर इस समय जितने भी आचार्य मण बंधु है अपने घर प्रतिष्ठान, अपने धार्मिक कृत्य, मंदिर देवालय सब जगह ये पूजन इत्यादि चल रहा है। खासकर अगर हम देखें तो इसमें विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, मुंडन, मांगलिक कार्य, इसको हो सके तो इसको टालना चाहिए, ये कार्य इसमें बाधित है, ये कार्य नहीं होते हैं। अगर ज्योतिषी महत्व से देखें तो इसमें पाप क्षय, मानसिक शुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, ग्रह दोष शांति, ये जो है इसमें प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। खासकर अगर हम बात करें कि जिसका गुरु कमजोर हो ज्योतिष दृष्टि से, उसको इस समय धार्मिक कृत्य करने चाहिए, मंगल कार्य कराने चाहिए, किसी कुंडली में चंद्रमा अशांत बैठा हो, मन खराब हो तो उसको ही कार्य करना चाहिए, राहु केतु की कोई बाधा हो तो ये पर्व बहुत ही अच्छा प्रबल है, इसमें ठाकुर जी के निमित्त किसी भी मंदिर देवालय में अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, किसी के मानसिक तनाव है, किसी को मानसिक पीड़ा है, उसका मन ठाकुर जी के प्रति लगेगा उसको लाभ मिलता है, किसी के कार्य में कोई रुकावट आ रही है तो ये महीना, ये मास ऐसा प्रभु का मास है, इसमें जो प्रार्थना आदि करते हैं इसके बाद जो शुद्ध जेठ आएगा उसमें उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें पीले वस्त्र का दान, केले के वृक्ष की पूजा, विष्णु मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप, शाम को दीपदान, जलाशय के किनारे कुआ, बावड़ी, नदी, जमुना जी, गिरिराज जी, आपके गंगा जी के किनारे ये करना चाहिए।

तुलसी पर जल अर्पण करें, गाय को हरा चारा दें, गरीबों को भोजन कराएं। खासकर श्री कृष्ण का जो मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका जाप करें। इससे आत्मचिंतन, संयम, साधना, सेवा, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये भाव जो है, ये पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु

0: ये पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु बैकुंठ धाम से लेकर गोलोकवास भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे और इस मलमास को लेकर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से कहा कि आज से इस मलमास को मेरे नाम पुरुषोत्तम नाम से लोग जानेंगे, और जो व्यक्ति इस समय धर्म के संबंधित दान पुण्य से संबंधित जो भी कार्य करेगा वो विभिन्न रोगों से मुक्त होगा, सुख समृद्धि आयु किसको प्राप्ति होगी और उसके मन में हरि स्मरण जागृत हो।
1: जैसा कि हम देख रहे हैं कि अधिक मास में हमारे ब्रज में काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने ब्रज में विभिन्न मंदिरों में ठाकुर जी के मनोरथ करे जाते हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है, गिरिराज्य की परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन की मथुरा की परिक्रमा लगाई जाती है, अपने ब्रज में इस दृष्टि से क्या महत्व है?
0: देखिए, ब्रज का तो बड़ा भाई महत्व है, क्योंकि यहाँ प्रभु अभी तो चतुर्मास आने वाला है, आप देखेंगे सभी देवता है ब्रज में ही विराजमान है, जमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि देव, साक्षात गिरिराज जी, साक्षात यमुना जी, ये गोलोकवास प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, यहाँ राधा रानी का, यहाँ तो प्राकृत स्वरूप है ठाकुर जी का। तो इस ब्रज में और ऐसे मास में जिसमें ज्येष्ठ मास है, वैशाख मास है, सावन मास है, ऐसे में अगर अधिक मास पड़ जाता है तो बहुत ही आनंद आता है, और बहुत ही आनंद के स्वरूप और ठाकुर जी का हरि स्मरण कर, यहाँ तो लता पत्ते भगवान में डाल डाल पर श्री प्रभु की आराधना है, तो इस ब्रज की तो महिमा अपरंपार है। इसमें यहाँ कार्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ की लता पत्ते नदिया बावड़ी आदि में प्रभु का हर क्षण क्षण कणकण में वास है।
1: और क्या कहेंगे हमारे सभी श्रोताओं से, सभी ब्रजवासियों से?
0: मैं तो एक ही बात कहूंगा, सभी इस युग में, इस काल क्षेत्र में आप देख रहे हैं चारों ओर आगजनी, आपस में युद्ध आदि चल रहे हैं, सभी साधनाओं को मन को शांत करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए इस भारतवर्ष की और भी उन्नति हो, और इस ब्रज मंडल के माध्यम से जो समाज, जो जागृत के लोग हैं, जो इस ब्रज मंडल में विभिन्न शहरों से, विभिन्न देशों से यहाँ पधार रहे हैं, ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं, हमारे विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो, सुख समृद्धि आयु हो, और सबसे पहले एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया और तीसरा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, ये चारों सुख हमारे जो आगंतु हैं उनको सबको प्राप्त हो, सुख समृद्धि आई हो और भारत हमारी सुख समृद्धि आई हो प्राप्त हो, श्री राधे।
2: श्रोताओं, श्री द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा में अधिक मास उत्सव के अंतर्गत ठाकुर जी के विभिन्न मनोरथों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आप हैं मंदिर के मीडिया प्रभारी श्री राकेश तिवारी।
1: सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक अभिनंदन।
3: आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में अधिक मास का अपना एक अलग ही महत्व है। अब लोगों के मन में एक जिज्ञासा आती है कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, लौत का महीना, इसे क्यों कहते हैं और इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे यहाँ सूर्य गणना से जो साल में दिन बैठते हैं वो बैठते हैं करीब 354 से 55, और चंद्र गणना के हिसाब से वे दिन बैठते हैं 365। तो जो 10 दिन का 11 दिन का फर्क है, वो प्रत्येक 3 वर्ष में वो फर्क बढ़ के 1 माह हो जाता है। तो अब जैसे हमारे यहाँ आप देखिए, आज द्वादशी है, कल एकादशी है, आज दसवीं है, आज हमारे यहाँ गंगौर है, हर एक तिथि का, हर एक दिन का अपना एक अलग नाम है। उस 1 माह का कहीं कोई नाम नहीं था, तो वह 1 मास इकट्ठा होकर ठाकुर जी के पास गया कि हे ठाकुर जी, हम क्या करें और इस मास का कैसे नाम दें। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कही, जिसका नाम कोई नहीं है मैं तुमको अपना नाम देता हूँ और इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि ये 1 महीने अधिक थे इसलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। इसको बहुत से लोग लौत का महीना भी कहते हैं। लौत का महीना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पूरे 1 माह में 1 बरस के सभी मनोरथ होते हैं। होली होगी, दीपावली होगी, नंद महोत्सव होगा, घटाओं के कार्यक्रम होंगे, लेकिन इस पूरे महीने में मकर संक्रांति का प्रोग्राम नहीं होता है, इसलिए इसे लौत का महीना कहते हैं। अब रही बात द्वारकाधीश मंदिर में मनोरथ की, तो अपने आराध्य के लाड लाना हर कोई व्यक्ति चाहता है। देखिए, आप मंदिर में नंद महोत्सव हो रहा है, कल मर्दम में कमल तलाई हुई थी, इससे 3 दिन पहले मंदिर में गुलाबी गंगौर हुई थी, आने वाले समय में 27-28

0: में विवाह महोत्सव होगा। तो इस प्रकार से पूरे एक माह तक निरंतर ठाकुर जी के विविध मनोरथ होंगे। और आपके आकाशवाणी के माध्यम से भी मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस माह में अधिक से अधिक भजन, पूजन, गंगा स्नान, दीपदान, जो हो सकता हो अधिक से अधिक सबको करना चाहिए और इस पुण्य माह का लाभ सभी को लेना चाहिए।
1: क्या इस माह में कुछ ठाकुर जी की और कुछ विशेष तरीके से पूजा अर्चना रहती है, कुछ विशेष भोग श्रृंगार रहते हैं?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई विशेष मनोरथ होगा तो थोड़ा दर्शन का टाइम बढ़ा सकता है, लेकिन सेवा पूजा नियमित रूप से वही रहेगी। मनोरथ में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, बाकी और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी सेवा पूजा भोग राग में नहीं होता है।
1: तो आप सोमवार को और उससे आने वाले समय में और क्या कुछ विशेष मनोरथ रहेंगे?
0: सोमवार को पुनः नंद महोत्सव होगा, 27 तारीख को ठाकुर जी का ब्यावले का मनोरथ है जो एक संस्था के द्वारा किया जा रहा है, उसमें भव्य बारात भी निकलेगी, ठाकुर जी की बड़ा कार्यक्रम होंगे तो वो सब होगा। उसके बाद 30-31 तारीख में फिर एक विवाह का कार्यक्रम होगा। ऐसे बड़े बड़े कई आम का मनोरथ होगा। इस तरीके से मनोरथ नित्य प्रति होते जाएंगे और उसकी नित्य प्रति अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। 15 जून तक निरंतर ये सभी कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में जारी रहेंगे।

आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि जल की अनावश्यक बर्बादी ना करें, जल का संरक्षण करें। श्रोताओं, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज लिया गया छोटा सा संकल्प हमारे आने वाले कल को सुरक्षित बना सकता है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के दैनिक कार्यों से लेकर खेती, उद्योग और पर्यावरण तक हर क्षेत्र में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना पानी के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जल है तो कल है। आज के समय में जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, पेड़ों की कटाई, नदियों का प्रदूषण और पानी का अत्यधिक दुरुपयोग इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। लोग आवश्यकता से अधिक पानी खर्च करते हैं, जिससे भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। यदि समय रहते जल का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में पीने के लिए पानी भी कम पड़ जाएगा, भारी कमी हो सकती है। जल संरक्षण का अर्थ है कि पानी का सही और सीमित उपयोग करना तथा उसे व्यर्थ होने से बचाना। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ आसान उपाय अपनाकर पानी बचा सकते हैं। और सबसे पहले इसमें आता है वर्षा जल संचयन। वर्षा के पानी को छत या खुले स्थानों में इकट्ठा करके टैंकों या गड्ढों में जमा करना और भू जल को रिचार्ज करना सबसे कारगर तरीका है। इसके लिए एक विशेष व्यवस्था भी की जाती है और आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी चलन है। और इसके बारे में आप जानकारी लें और इसको यदि आप लगाते हैं तो इससे भूजल स्तर में काफ़ी वृद्धि होगी। और इसके अलावा अगर हम अपनी कुछ दैनिक आदतों में बदलाव लेकर आएँ तो इससे भी हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग ब्रश करते समय या शेविंग करते समय नल की टोंटी को खुला छोड़ देते हैं। अगर हम जब आवश्यकता हो तभी नल को खोलें तो इससे हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। नहाने के लिए अगर हम शावर की जगह अगर सीधे बाल्टी और मग का उपयोग करें तो इससे भी अब काफ़ी पानी बचाया जा सकता है। और इसके अलावा देखा जाता है कि लोग अपने वाहनों को बहुत देर तक सीधे समर्सिबल पाइप से धोते रहते हैं और पता भी नहीं चलता कितने लीटर पानी अनावश्यक ही सड़क पर बह जाता है। अगर हम ऐसी ही कुछ बातों पर ध्यान दें तो हम जल का काफ़ी संरक्षण कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जल प्रकृति का अनमोल उपहार है और इसे हमें संभाल कर रखना है। और अब बात कर लेते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तो आज की खास खबरों में है, विद्युत निगम ने जिले की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 45.9 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है और इससे जिले के 14 विद्युत सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए 6 सब नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ और भी खबरें हैं। पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा स्नान पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। आज सोमवार को यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसके लिए अधिकारियों ने रविवार को घाटों की व्यवस्थाएं परखीं और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जनगणना के पहले चरण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में 4,700 से अधिक ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 150 से 200 मकान सूचीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ एक और खबर है, आसमान से बरस रही आग देश के बड़े हिस्से को लगातार झुलसा रही है। नौतपा सोमवार से शुरू हो रहा है जिससे सूर्य की गर्मी चरम पर पहुंच सकती है और अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि 25 मई इतिहास के झरोकों से कहती है कि आज ही के दिन

25 मई 2024 में विश्व फुटबॉल दिवस की शुरुआत की गई थी और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा घोषित किया गया था। और आज ही के दिन सन 2003 में चिली ने विश्व कप टेनिस का खिताब पहली बार जीता था। और आज ही के दिन सन 2008 में स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया रोबोट आज ही के दिन मंगल ग्रह पर उतरा था। उसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज तर्पण। प्रस्तुति थी जितेंद्र सिंह की और कार्यक्रम संयोजक थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
3: जी,

0: सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, आप सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा।

0: कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे
5: बच्चों बच्चों बच्चों,
6: फट जाए,
5: सभी
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
9: Yes, come in.
8: Sir.
9: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ।

0: एक सच्चे सिपाही हो।
1: सर।
0: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
1: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
0: हाँ हाँ, कहो।
1: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
0: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: गो अहेड यंग मैन।
1: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
8: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
4: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
4: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।

0: इस तरह चविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुनते हैं एक सूचना।

प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25-30-135 फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0-565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड है 281003। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्ड

अभी आपने सुना मुकेश को फिल्म आशिक में, और आइए सुनते हैं कुमार सानू और साथियों को। फिल्म का नाम है मिस्टर आशिक।

आपने सुना मुकेश को फिल्म मेरा नाम जोकर में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है खिलौना।

लता मंगेशकर, अभिजीत और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म परंपरा में, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: लता मंगेशकर कुमार सानू के गाए फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
1: हेलो हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
3: ब्रज रेडियो श्रोता मित्र, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीक्षित साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के मानवर। आप कैसे हैं?
2: एकदम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, रेडियो सुनते रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करने का इच्छुक रहता हूँ। और ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी का आनंद भी ले रहे हैं घर में।
2: बिल्कुल आनंद लीजिए गर्मी का, लेकिन सावधानी के साथ रहिए।
3: जी जी, मैं बाहर निकलता नहीं हूँ धूप में और प्रायः प्रायः घर के अंदर रहता हूँ और बाहर सुबह 6 बजे के बाद नहीं निकलता हूँ।
2: बिल्कुल, बताइए आज आपकी क्या फरमाइश है?
3: मानवर, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में भगवान की आशीष की वंदना करना बहुत ही उत्तम कार्य है और इसमें बहुत ही फलदायी होता है। ऐसे में आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आशा भोसले जी का गाया हुआ फिल्म का नाम है आवाज
2: जी
3: और भक्ति गीत है ऐसी मुरली बजाई घनश्याम,
2: सुनवाते हैं प्रजापति जी आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी, हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोतावत सांवरिया गांव खैरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान से।
0: सांवरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: और आप कैसे हैं?
0: एकदम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं।
1: हम भी बिल्कुल ठीक हैं। इस गर्म मौसम में 48 के करीब टेम्परेचर है।
0: बहुत ज्यादा गर्मी है, अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का।
1: बिल्कुल ध्यान है सर, बिल्कुल।
0: जी
1: और हम भी यही कहेंगे भाई, सभी भाई अपने ये जीव जंतु पशु हैं, इन सभी का पानी का जरूर ध्यान रखें।
0: बिल्कुल, सभी को गर्मी लगती है, सभी व्याकुल
1: और
0: हैं इस गर्मी से।
1: प्यास भी लगती है सर, पानी जरूर चाहिए जिंदा रहने के लिए।
0: जी, बताइए आज सांवरिया जी कौन सा गीत आपको सुनवाएं।
1: अपना देश ये लो रो पी लो नारियल पानी।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी।
0: राधे राधे सर जी।
1: राधे राधे,
0: मैं मथुरा मंडी चौराहे महेंद्रनगर से बोल रही हूँ
1: अपना शुभ नाम बता दीजिए।
0: जी। मेरा नाम प्रीति है।
1: जी प्रीति जी, स्वागत है आपका।
0: हाँ, थैंक यू सर जी। वो मेरे को सागिर्द फिल्म का कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार ये गाना सुनना है सर।
1: जी गाना सुनवाएंगे। करती क्या हैं आप प्रीति जी?
0: सर, मैं हाउसवाइफ हूँ
1: जी, घर में सब ठीक ठाक हैं आपके?
0: सर। सब ठीक ठाक है, थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बस
1: जी
0: बच्चों का
1: हाँ,
0: थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। पहली बार फोन मिला है आपका?
0: सर। पहली बार ही मिलाया है मैंने।
1: बड़ी खुशी की बात है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
0: आप अगर मेरा गाना सुनवाएंगे अभी तो मैं बार बार करूंगी कॉल।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है सर, धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, आपको मेरा सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र महेश चंद सदर बाजार से वार्तालाप कर रहा हूँ सर।
0: महेश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हम भी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर।
0: कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है सर, हम बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और बस गर्मी का आनंद ले रहे हैं घर के अंदर बैठ करके।
0: बिल्कुल, गर्मी का आनंद लीजिए, लेकिन सावधानी जरूर रखिएगा।

0: सावधानी बरतने का हम जैसे उम्र वालों के लिए तो सावधानी बहुत ही जरूरी है
1: जी जी
0: सर।
1: बिल्कुल।
0: और सर वैसे आप और आपकी टीम बढ़िया है, यही हम हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं सर।
1: जी सभी लोग अच्छे हैं। बताइए आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी।
0: सर मेरी फरमाइश है फिल्म इज्जत का,
1: जी
0: ये दिल तुम बिन लगता नहीं तो हम क्या करें।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: हम भी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: ग्राम नवला काचान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब की बात कर रहा हूँ जी।
0: रूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद। और कैसे हैं सभी लोग आकाशवाणी परिवार में?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपके परिवार में कैसे हैं सब?
1: सब बढ़िया है,
0: जी,
1: मंगल है। खेती
0: क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: बाड़ी करता हूँ सर जी, खेतों में मूंगफली और मक्का लगा हुआ है
0: अच्छा,
1: जी।
0: तो काम में व्यस्त हैं।
1: जी आजकल धूप भी काफी पड़ रही है और लू भी चलने लगी है, तो
0: जी
1: इसमें ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें सभी, खासकर
0: बिल्कुल।
1: जो बड़े बूढ़े जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, जैसे 6 महीने से लेकर और 5 साल तक के बच्चे
0: उनका ध्यान रखना है।
1: जी। फिल्म
0: बताइए, आज आपकी क्या फरमाइश है?
1: है गिरफ्तार,
0: जी
1: गाने के बोल रहे हैं, धूप में निकला न करो रूप की रानी
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

यादों के झरोखे से। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे हम मन्ना डे को लेकर, मन्ना दा को लेकर, उनके गाए चर्चित लोकप्रिय हर दिल को छूने वाले वो गीत जिसमें ऐसा लगता था कि कोई दिल तक पहुंच गया है और एहसासों को छूकर जा रहा है। ऐसी आवाज़ के, मखमली आवाज़ के मालिक थे मन्ना दा। आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये गीत।

रोशन का था। यादों के झरोखे में आज हम बात कर रहे हैं मन्ना डे को लेकर। जी हाँ, मन्ना डे जिन्होंने हर मूड के गाने गाए, उन्होंने कॉमेडी गीत गाए और ट्रेजेडी सॉन्ग्स गाए, साथ ही साथ ऐसे गीत जहाँ हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत की पकड़ होनी चाहिए, तो वो भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने उन गीतों को गाया। और आइए सुनते हैं यादों के झरोखे में आज मन्ना डे की कुछ फिल्मी नगमे। और अभी जो गीत सुना आपने फिल्म ताजमहल से था, लेते हैं इस कार्यक्रम में मन्ना डे के स्वर में गाया अगला गीत। इस गीत को लिया फिल्म, जी हाँ, फिल्म पड़ोसन से। गीत शब्दकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत राहुल देववर्मन का, आवाज इस गीत में किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की, संगीत राहुल देव वर्मन का।

había presionado. इस गीत को मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे के स्वर में फिल्म ताजमहल से गीत, शब्दकार साहिर लुधियानवी और संगीत

फिल्म पड़ोसन से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार मन्नाडे महमूद के स्वर में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत राहुल देव वर्मन का। मन्नाडे का जन्म 1 मई 1919 को कलकत्ता, जी हाँ, जिसे आज कोलकाता कहते हैं, हुआ था। उनका जन्म इस शहर में माँ का नाम महामाया और पिता का नाम पूरन चंद्र डे था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने चाचा प्रसिद्ध संगीतकार कृष्णचंद्र डे, यानी को जिनको हम केसी डे के रूप में भी जानते हैं, वहाँ ली। और ये परिवार के लोगों को भी लग गया था धीरे धीरे कि इनका रुझान संगीत में है। एक बात मन्ना डे के करियर में संगीत का जो उनका रुझान रहा उसमें बड़ी दिलचस्प है कि उनको अक्सर वो गाने दिए गए जो अक्सर बड़ी उम्र के लोगों पर फिल्माए गए। तो ये एक अलग सी बात है कि एक कम उम्र का व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तियों पर के लिए गीत गाता है और उसकी आवाज़, उसका जो किरदार है, उस किरदार पर बिल्कुल सही बैठती है और वो गीत काफ़ी लोकप्रिय रहे। आइए सुनते हैं एक अलग अंदाज का गीत मन्ना डे के स्वर में। इस गीत को लिए हमने मेरी सूरत तेरी आंखें, इस फिल्म से ये नगमा।

मेरी सूरत तेरी आँखें। जी हाँ, इस फिल्म से अभी आपने सुना मन्ना डे को, और आज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हम मन्ना डे को लेकर। तो ये बात जाननी भी ज़रूरी है कि पहली फिल्म उनकी रही तमन्ना। 1942 में उन्होंने यहीं से शुरुआत करी अपने पार्श्व गायन की। इस फिल्म का संगीत उनके चाचा कृष्णचंद डे ने तैयार किया था, और हमने बात की कि हर रंग का हर मूड का गीत मन्ना डे के स्वर में है। और ये गीत सुना हमने, उनका कॉमेडी का गीत सुना, और एक ऐसा गीत जिसे सुनकर लगता है कि एक अलग अंदाज है उस गीत का। इस गीत में उन्होंने अपने एक उम्रदराज व्यक्ति के लिए गीत गाया है, फिल्म वक्त से ये नगमा। आइए सुनते हैं, शहर लुधियानवी के बोल, संगीत रवि का, स्वर मन्ना डे का।

अभी सुना आपने गीत फिल्म मन, जिसे लिया था फिल्म वक्त से, और आइए सुने इस फिल्म से ये गीत, फिल्म काबुलीवाली से ये नगमा। प्रेम धवन के गीत को संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

अभी आप सुन रहे थे मन्नाडे को फिल्म काबुलीवाला में प्रेम धवन के गीत को संगीत दिया सलिल चौधरी ने। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यादों के झरोके से अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत बात और SMS। जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9419225575 9411225575।

आप जुड़े कार्यक्रम में अपने व्हाट्सएप संदेश के साथ। चंडीगढ़ से शेफाली शेफी डेविस विमला सतीश अनेजा, मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत और रोजस भाई का संदेश मिला। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चपा कपिल चपा ईशान और पूजा परिहार जुड़े कार्यक्रम में। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ से नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिजा यादव, आरती पूजा प्रसाद, सोनल बेबी सिया। जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता का भी संदेश मिला। कार्यक्रम में जुड़े हैं बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। और अगला संदेश श्रोता साथियों का निम्भोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख, सुनील कोंडे का। आपने अपनी फरमाइश भेजी। और अगला संदेश लेते हैं कैथल हरियाणा से हैं आप। जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा मोहाली से, टीडी मल्होत्रा, सुभाष चंद्र बजाज। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा नारक चंद और मल्होत्रा परिवार। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल और डुग्गू भाविक भी जुड़े कार्यक्रम में। आप भी जुड़े। बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्यप्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा और बेबी आयशा खत्रे, ये सभी श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम में। और शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी ने मैसेज भेजा है। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि और अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, संगीत सुनीता रानी, आरजू हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल, ये सभी परिवारीजन। उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, अर्णव और सत्यमानंद जुड़े पाकुड़ झारखंड से हमारे नियमित श्रोता। राजगांव के अमरावती महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और रामेकर परिवार जुड़ा है कार्यक्रम में। ये अगला संदेश मगनपुर झारखंड से है अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और इनके परिवारी जन। इन सभी ने अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा हमको भेजा। और अगले संदेश के साथ हैं लाहौड़ी जिला।

होबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, रागिनी, रिया, दिव्यांशु, आराधना, रोनिका कार्यक्रम में। रिमी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का भी मिला है मैसेज और अगले संदेश के साथ है। मगनपुरा झारखंड से अब्बास आलम, अमजद, बमनीशी और इनके परिवारिजन, सुखविंदर सिंह, अनुराधा, ये सभी जुड़े हैं कार्यक्रम में। और आपका संदेश भी मिला मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतन बाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर ये गीत। इस गीत को लिया फिल्म हसीना मान जाएगी। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा आवाज इस गीत में है। सोनू निगम, संजय अलका याग्निक की, नितिन राजकंवर का गीत, संगीत अनु मलिक का।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్.

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और SMS। अभी नगमा सुना आपने, फिल्म हसीना मान जाएगी। जी हाँ, इस फिल्म में सोनू निगम, अलका याग्निक को सुना। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में जुड़े हैं श्रोता साथी अपने मैसेज के साथ में। आप हैं गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदय भानपाल, जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश शेरी बढ़ने अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर आदित्य दामोदर का भी संदेश मिला। दयापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन एले नवदीप और अशोक येले जुड़े कार्यक्रम में। मलकापुर से नारायण इंगले सोपान आशीष मुहेकर नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर निर्मला और विशाल नवारकर भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। और अगला संदेश गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से है तुलसी मस्कीन दीना आशीष चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता और केशु रिधान खुराना का संदेश मिला। ऊपरकोट मोहल्ला चकुंडी बुलंदशहर से है मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शहरवास फरदीन सुहान अरजान रब्बान ये जुड़े हैं। श्रोता साथी बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश और राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के श्रोता रिजवान खान आयशा सबिया अनस और रेहान कार्यक्रम में जुड़े हैं और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। अगले संदेश के साथ में है श्रोता साथी झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया। एक और संदेश श्रोता साथियों का आप जुड़े गुजरात गांधी गांव से प्रवीण सोनी पूजा पायल जूली और जगदीश जौहरी। कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवणे करिश्मा सोनवणे अविका ऐसाइशा श्री गणेश अविका हार्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार अविका जीविका सानू कुमार और अर्चना कुमार का

मैसेज मिला। आर्यन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीति, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित और प्यारी कोको, काशी विश्वनाथ धाम बनारस के श्रोता साथी हैं और अपने मैसेज के साथ श्रोता साथी अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। एक और मैसेज के साथ में है सौरभ, निषाद, प्रकाश, निषाद, बल्लू, निषाद और तरुण यादव, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के श्रोता साथी। अगला संदेश श्रोता साथियों का आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर आई और महराज जहां।

एक और मैसेज के साथ जुड़े हैं श्रोता साथी कार्यक्रम में। उदय भानपाल, जय हिंद। फुलाई नगर बीड़ महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि आकाश करवा और आकांक्षा करवा का संदेश मिला है और आप भी जुड़े। सैयद आलम हाशमी, बेगम गुलनाज हाशमी, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से श्रोता साथी हैं। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज शिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, ये सभी उत्तराखंड के श्रोता साथी। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने मैसेज भेजा। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा इल्मा, एस असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान भी जुड़े कार्यक्रम में। ददरेंगी बाटापाड़ा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल जुड़े हैं कार्यक्रम में। सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल जमानिया जिला गाजीपुर के श्रोता साथी हैं और मैसेज के साथ गांव पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, पहलाज राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर। कार्यक्रम के श्रोता साथी अपने मैसेज के साथ में विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर और मोतारा महाराष्ट्र से ये संदेश भेजते हैं। आइए सुने श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म आंखें से ये नगमा, आवाजें कुमार सानू साधना सरगम की। इंदिवर के गीत को संगीत दिया पप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोता वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में सोमवार यानी कि आज अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए आज की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुरंगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। श्रोताओं यदि आप स्त्री संबंधी रोग जैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी, पेल्विक दर्द, यूरिनरी समस्या, यूटीआई, पीसीओएस, पीसीओडी, बांझपन आदि समस्या के समाधान के लिए प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अपने समाधान के लिए फोन करें हमारी विशेषज्ञ आज की डॉक्टर सौरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम का समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई।

और एक बार फिर से लेते हैं व्हाट्सएप संदेश श्रोता साथियों के कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ मारा रहा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी।

शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन रसीद, सुहेल हसन, अनम अब्बासी और यशफ, सिकंदर राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन का भी संदेश मिला और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय, साई, करण, ये सभी जुड़े कार्यक्रम में। और अगला संदेश है जॉन डिकस्टो, रोजी, पहल और विलिस डिकस्टो का, जनकपुरी, सहारनपुर से। संदेश के साथ में है कार्यक्रम में जुड़े श्रोता साथी, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, कोमल सेन, तोषण, विनायक सेन जुड़े सौगा, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से अपने संदेश के साथ में। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और नामदेव परिवार, जी हाँ, मेन मार्केट पोस्ट सोरई, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ये सभी श्रोता साथी संदेश के साथ में। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता का ये मैसेज है, विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू भी जुड़े शिवपुरम कॉलोनी से, कमला देवी महोबिया और अनया ईशु बाबू। और अगला संदेश लेते हैं श्रोता साथियों का। संदेश के साथ मैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका, मैसेज के साथ में रहे स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। एक और श्रोता साथी कार्यक्रम में जुड़े अपने संदेश के साथ में कलानौर हरियाणा से नरेंद्र कुमार शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत और गुरु शब्द सिंह राहुल। एक और मैसेज के साथ में प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दीपेंदर, वरिंदर, कुलदीप सिंह, एकम, धमन और अभिजोत, ये सभी करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से हैं ये सभी श्रोता साथी। और मैसेज के साथ में जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, छत्तीसगढ़ पथरिया बरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश और नेहा और वन्या सिंगरौल का मैसेज मिला। और आइए सुनते हैं फिल्म सफर से ये गीत, श्रोता साथियों की पसंद पर गीत, इंदिवर का संगीत, कल्याण जी आनंद जी का आवाज दे रहे हैं गीत को, लता मंगेशकर।

फिल्म सफ़र से अभी आपने सुना ये गीत, गीत इंदीवर का, आवाज़ लता मंगेशकर की। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं संपत लाल जोशी। सुनते हैं हम इनसे लावनी।

बाके बिहारी में तो तेरे द्वार धाई रे,

बाकी बिहारी में तो तेरे द्वार आई रे। अभी आपने सुना इस लावणी को आज के कलाकार संपत लाल जोशी।

भोजन नग्न हो करके करा दो आप हम सबको भोजन, वरना हम जाएं भूखे वर

ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, ये बोली उनसे नारी। अभी आप सुनिए लावणी संपत लाल जोशी के स्वर में, और आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में अगली लावणी, मैया मेरो ब्याह करा दे।

0: शास्त्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित में जाएं।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बने तो
5: अपने का खिलाई बेधर्मा। जो
6: थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ
1: मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद के तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना

0: परीक्षा जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर में यानी कि 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी उषा पांडे और दुर्गेश भास्कर, जिसमें आज का विषय रहेगा कार्यक्रम का हेलो सहेली कार्यक्रम। इस फोन इन कार्यक्रम का आज का विषय गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। आज की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। साथ ही लेंगे आप कार्यक्रम में घरेलू टिप्स पर जानकारी। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दिन में 2:00।

30 मिनट पर युवा और आज संध्या 5 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह एवं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदत्त पद्म पुरस्कार 2026 वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय रहेगा संध्या 5 बजे। संध्या 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज विश्व फुटबॉल दिवस, गंगा दशहरा और रास बिहारी बोस जयंती पर बात की जाएगी, चर्चा रहेगी। प्रिया दीक्षित से सुनेंगे आज कहानी युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत, जहां चाह वहां राह। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का।

संध्या 6:15 पर किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें बागवानी पौधे लगाने की तैयारी, मथुरा में कौन से फल वृक्ष लगाना लाभकारी, इस विषय पर रहेगी चर्चा। साथ ही सुनेंगे आप भेंट वार्ता, आज का विषय रहेगा कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग एवं किसान की जागरूकता। आज के विशेषज्ञ होंगे प्रगतिशील कृषक अंकित अग्रवाल और आपसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में ब्रज लोकगीतों का। संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मदन मोहन शर्मा से ब्रजवार्ता, ब्रज में अधिक मास को महत्व। शाम सुहानी, जी हाँ, ये कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7:31 पर। श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे, आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत, करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412225575। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम सुना जा सकेगा एक ही फिल्म से। फिल्म संगीत का एक बार आनंद फिर से लेंगे आप रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम के अंतर्गत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे गंगानाथ चतुर्वेदी का लिखा नाटक मारीच का, प्रस्तुति डॉक्टर अचला नागर की रहेगी। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में, आज के कलाकार होंगे गजाधर पाठक, आप सुनेंगे इनसे रुद्र वीणा वादन जो राग जोग में निबद्ध रहेगा। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देश गान। मैंने सुनेगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हेलो सहेली कार्यक्रम। आज का विषय रहेगा फोन इन कार्यक्रम का गर्भधान की समस्या कारण और निवारण। आज की विशेषज्ञ है डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ।

जीवन की हर धड़कन में एक नई उम्मीद पलती है। जीवन की हर धड़कन में एक नई उम्मीद पलती है। ममता की छांव में ही तो दुनिया सबसे सुंदर लगती है। जी बहनों, माँ शब्द सुनकर हम सब एक तरफ तो भावुक हो जाते हैं, वहीं एक तरफ हम सब खुद माँ बनने की बात सोचकर रोमांचित हो उठते हैं। वहीं माँ बनना एक महिला को उसके स्त्री होने की पूर्णता को दर्शाता है। हमारी प्यारी बहनों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन कार्यक्रम हेलो सहेली में। बहनों, आज का ये कार्यक्रम होगा गर्भाधान की समस्या, कारण और निवारण विषय पर। जिन भी बहनों या श्रोताओं को इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो हमारे फोन नंबर 2530135 पर फोन करके या मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाकर फोन कर सकते हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर भी व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बहनों, जल्दी से प्रश्न पूछिए फोन पर या व्हाट्सएप पर। आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित

0: किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरांगना अग्रवाल को। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और बहनों, आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, यानी दुर्गेश भास्कर, और साथ में है मेरी सखी
1: उषा पांडे।
0: तो सबसे पहले कीजिए स्वीकार हमारा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि गर्भाधारण ना होने के कौन कौन से कारण होते हैं?
1: कोई भी महिला अगर गर्भधारण नहीं कर पा रही है, उसके कारण पुरुष और महिला दोनों के कारण हो सकते हैं। अगर ज़्यादातर केसेस में ये दोनों 50-50% होते हैं। अगर महिलाओं को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अंडेदानी में अंडे ना बनना, ट्यूब खुला ना होना, या फिर बच्चेदानी में जो जगह है वो पूर्ण ना होना, ऐसे केसेस में महिला को गर्भ धारण करने में समस्या आ सकती है। या फिर हस्बैंड के सीमेन सैंपल में कोई प्रॉब्लम होना, या फिर आपस में उनको समय पता ना होना, जो कि फर्टाइल पीरियड होता है। ये सब कुछ मुख्य कारण है जिसके कारण किसी भी महिला को गर्भ धारण करने में समस्याएं आ सकती हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, गर्भाधान की बात यहाँ चल रही है, महिलाओं में तरह तरह की समस्या देखने को मिल रही है, तरह तरह की बीमारियाँ, जिसमें PCOD है, PCOS है, पेल्विक दर्द है, इस तरह की समस्याएं उनको आ रही हैं, UTI इन्फेक्शन की समस्या आ रही है। तो सामान्य तौर पे आज जो आज का परिदृश्य है, उसमें कौन सी ज़्यादा समस्या आपके सामने आ रही है?
1: सभी प्रकार की जो आपने बीमारियों का वर्णन किया, सभी प्रकार की महिलाएं हमारे पास आ रही हैं। अगर PCOS की बात की जाए, इसका नाम बदल के अब PMOS हो गया है, पॉली मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिजीज़। सो ऐसे केसेस में ये महिला भी ज़्यादातर हमारे पास इसलिए आ रही हैं क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादातर महिलाएँ अपने वर्क को आगे रख के लेट मैरिजेस कर रही हैं, देर से शादी करती हैं, जिसके कारण वो देर से अपनी प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। दूसरे केसेस में हमारे आसपास एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, इन्फेक्शंस, ये सब बहुत कॉमन हो गए हैं। इसके अलावा फैमिली में और वर्क प्रेशर स्ट्रेस महिलाओं में एवं पुरुषों में बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण उन्हें गर्भ धारण करने में समस्याएं हो रही हैं। इन्फेक्शन की बात करें, जैसे कि आपने UTI के बारे में बात की है, UTI महिलाओं में कॉमन हो गया है। सेकेंडरी रिपीटेड अगर बार बार किसी महिला को यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है और उसका पूर्ण निदान नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में बहुत बार ये पेल्विस में ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि महिलाओं में जो पेशाब का रास्ता है और जो बच्चे को जन्म देने वाली रास्ता है वो बहुत पास पास होती हैं। ऐसे केसेस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मतलब नीचे बच्चेदानी और उसके आसपास के अंगों में इन्फेक्शन होना,
0: उससे दर्द भी होता
1: है, उससे मरीजों को, जो मरीज हमारे पास इसकी परेशानी के साथ आ सकते हैं, वो कभी कभी गंदा पानी जाना, पेट में हमेशा दर्द बना रहना, भारीपन रहना, पीछे पीठ में दर्द होना, या फिर बच्चा करने में या बच्चा रुकने में प्रॉब्लम होना, इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ हमारे साथ आते हैं।
0: अच्छा मैम, जैसे कि कितने समय तक प्रयास करने के बाद भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हमें कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?
1: जो बुक्स कहती हैं कि एक साल तक अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशंस हस्बैंड एंड वाइफ ने किए हैं शादी के बाद, और उसके बाद भी अगर वो गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में उनको फिर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। पर एक साल का समय अपने आप को दोनों को देना चाहिए।
0: जी, तो मैम, ये समस्या केवल महिलाओं में होती है या पुरुष भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं?
1: बिल्कुल, मैंने अभी जैसे कि पहले वर्णन किया था कि इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही बराबर तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं। आज के ज़माने में तो बिल्कुल मेल्स में भी ये चीज़ देखी गई है, बिकॉज उनका वर्क प्रेशर, स्ट्रेस और उनका खान पीन और जो उनकी एडिक्शंस हैं, जो उनकी हैबिट्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल का इनटेक करना या फिर ड्रग इनटेक करना, उसकी वजह से उनके शुक्राणु पर बहुत असर पड़ता है।
2: डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल ले लेते हैं।
1: जी
0: हेलो।
3: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
3: मैं जितेंद्र दूसारसिया, ग्राम मऊ, तहसील खैर जलालीगढ़, यूपी वेस्ट से।
0: जी जितेंद्र जी, अपना प्रश्न।
3: मेरे तीन सवाल हैं।
0: जी पूछिए।
3: पहला सवाल तो मेरा यह है, जैसे किसी माता को स्तन कैंसर है
0: जी,
3: क्या उसको फीडिंग कराना चाहिए या नहीं कराना?

0: होना चाहिए
1: जी।
0: दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे महिला अपने आप से कोई हिमपुष्पा लेता है या कोई और टॉनिक लेता है, क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए?
1: अच्छा,
0: और एक और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे माता बोलती हैं कुछ कि दूध पिलाने से कमजोरी आ जाएगी, क्या ये सही है? इन तीनों प्रश्नों पे प्रकाश डालें। नमस्कार
1: जी। नमस्ते, अब ये बताती हैं आपको मैम।
2: नमस्ते, आपका जो पहला प्रश्न था कि स्तन कैंसर में महिलाएं बच्चे को फीड करा सकती हैं कि नहीं, कि ऐसे केसेस में हम यूजुअली महिलाओं को मना करते हैं कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना,
3: डॉक्टर साहब आप अपनी
1: बात बताइए,
2: बच्चे को फीड ना कराएं, डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चे को फीड कराएं ना कराएं, और क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चे को यूजुअली हार्म हो सकता है। दूसरा जो उनका सवाल था कि वो जो हेम पुष्पा और जो ये सब दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, जो
1: गर्भनिरोधक
2: महिला, गर्भनिरोधक नहीं, ये सब ब्लड प्यूरिफायर्स आती हैं, ये जो महिलाएं लेती हैं क्या वो ले सकती हैं? अगर किसी महिला को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या उनकी महावारी ठीक तरीके से नहीं आ रही है या फिर उनके शरीर में कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में वो ये सब जो दवाइयां हैं जो अलग अलग नाम से बिक रही हैं बाजार में, वो ले सकती हैं। तीसरा सवाल,
1: बच्चे को दूध पिलाने से कमजोरी आती है क्या, ये था?
2: बच्चे को दूध पिलाने से माँ को कभी भी कमजोरी नहीं आती है, ये दोनों और माँ और बच्चे के लिए एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। माँ को हमेशा स्तनपान ही कराना चाहिए, उसके बेनिफिट्स बच्चे को अभी जो अभी बच्चा बड़ा हो रहा है और आगे अपने जीवन में भी मिलते हैं। माँ को भी इसके फायदे मिलते हैं कि माँ का वजन कम होने में इसमें सहायता होती है।
1: स्तन कैंसर होने से भी बचा जा सकता है मेरे ख्याल से ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: डॉक्टर साहब, हम लोग गर्भाधान की बात कर रहे हैं, तो गर्भाधान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से टेस्ट, यदि परेशानी आ रही है गर्भधारण करने में महिला को, तो कौन कौन से टेस्ट बताए जाए,
1: करवाई जाए?
2: कोई भी महिला, जैसे कि मैंने कहा, अगर एक साल तक बच्चा नहीं रुक पा रहा है उन्हें, तो सबसे पहले अपने नज़दीक के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। और सबसे पहले डॉक्टर उन्हें ये समझाता है कि उनका फर्टाइल विंडो, मतलब आपस में साथ रहने का समय जिसमें बच्चा होने की संभावना ज़्यादा होती है, वो क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को इसी के बारे में क्लियर नहीं होता है, ये मैं आज बता देती हूँ। जो भी महिला का पीरियड आता है उसको पहला दिन माना जाता है, और अगर किसी महिला की रेगुलर महावारी है, मतलब 28 से 30 दिन की महावारी है, ऐसी महिला को 12 से 16 दिन के बीच में अपने पति के साथ साथ रहने में गर्भधारण हो सकता है और इनफर्टिलिटी से वो बच सकते हैं। दूसरा, अगर वो हमारे पास कभी भी आते हैं तो हम कुछ सर्टेन टेस्ट उनको देते हैं। सबसे पहले हम एंडोक्राइन रिलेटेड टेस्ट उनको देते हैं, जैसे कि जिसमें आता है थायराइड आता है, प्रोलैक्टिन आता है, FSH वैल्यूज आती हैं, LH वैल्यूज आती हैं, जो कि महिला को एस्ट्राडायोल आता है, जो महिला के शरीर में जो ये सब हॉर्मोन्स बन रहे हैं और इनकी गड़बड़ी के कारण अगर कोई बच्चा
1: नहीं कर पा रहे हैं
2: तो उनका निवारण किया जा सकता है। इसके अलावा महिला को पीरियड्स, जब उसका अंडा बनना शुरू होता है, उस दौरान बुलाकर उसका अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है या कितने साइज का बन रहा है, जिसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी कहते हैं, वो किया जाता है। और जब अंडा बन चुका होता है तो उसको बताया जाता है कि कब वह साथ में रह सकती है। चौथा, उसकी ट्यूब टेस्ट करी जाती है। ज़्यादातर ये केसेस, ये ट्यूब टेस्ट हम पीरियड्स के बाद 6वें-7वें दिन पे करते हैं, इसको HSG भी कहा जाता है। इससे हमें एक लमसम आइडिया मिल जाता है कि मरीज की ट्यूब खुली है कि नहीं, बाकी यूट्रस प्रॉपर है कि नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी हमें आइडिया मिल जाता है।
1: अच्छा मैम, हाँ, ये तो रही जाँचें। महिला को कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिससे गर्भधारण करने में बाधा होती है?
2: जैसे कि हम बात करें, अगर अंडेदानी से रिलेटेड है तो उसमें PCOD, जैसे कि आपने पहले कहा ही था PCOD, या फिर कोई भी और ओवरी की गांठ जिसमें अंडा वो बनने में वो उसे दिक्कत करता है, तो उस कारण उसमें प्रॉब्लम।
1: अपनी बात हम आगे जारी रखेंगे, उससे पहले एक फोन ले लेते हैं
2: जी।
1: हेलो,
4: नमस्ते।
1: नमस्ते, आप अपना नाम बता दीजिए।
4: हम विपिन कुमार बोल रहेगा छोड़ी से
1: जी। विपिन जी, डॉक्टर साहब सुन रही हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए।
4: हमारे दो प्रश्न हैं, अलग अलग हैं पर।
1: हाँ पूछिए।
4: पहला प्रश्न तो ये है कि एक 17 साल की लड़की है, उसको पीरियड का आने में दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा।
4: और एक 37 साल की हमारी माता जी है, उनको पीरियड ऊपर नीचे होता रहता है
1: जी।

0: ठीक है, जो महिला जो लड़की 17 साल की है, अगर उसको पीरियड में दर्द हो रहा है, तो नॉर्मली भी हमारे पीरियड्स में दर्द होता है, पर वो दर्द सहनीय होता है। महिला अपना निजी काम या अपना डे टू डे वर्क कर सकती है, पर अगर ऐसा दर्द हो रहा है जो कि पीरियड
1: असहनीय है।
0: असहनीय है, पीरियड आने से पहले ही शुरू हो रहा है, तो ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर से जाके मिलें। बहुत बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि अंडेदानी में गांठ होना, या फिर बच्चेदानी में कोई रसौली होना, या फिर नीचे कोई इन्फेक्शन होना, जिसके कारण जब भी हमारे महावारी का समय
1: पीरियड्स
0: आता है तो
1: दर्द शुरू हो जाता है।
0: बच्चेदानी में वो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा, 37 साल की महिला को अगर पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, लगातार इरेगुलर आ रहे हैं, तो सबसे पहला कारण या तो वो प्रेगनेंसी भी हो सकती है, अगर प्रेगनेंसी हमने रूल आउट कर ली है। अगर महिला प्रेगनेंट नहीं है, उसके केस में अगर पीरियड्स महावारी ऊपर नीचे आ रही है, तो यूजुअली जो पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप होता है किसी महिला में जल्दी शुरू हो जाता है, जिसके कारण जब पीरियड्स जाने वाले होते हैं और हॉर्मोन्स की गड़बड़ी होती है, जो हार्मोन ज्यादा होना चाहिए वो कम हो जाता है, जिसके कारण पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे केसेस में अगर कोई रसौली नहीं है, कोई गांठ नहीं है, तो दवाइयों द्वारा इसे ठीक किया जा सकता
1: तो
0: है।
1: मैडम, ये 37 साल की जो उम्र इन्होंने बताई है, उसमें भी मेनोपॉज हो सकता है क्या?
0: मैम, उसको प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं, यूजुअली नहीं होता है। अगर हो रहा है तो ऐसी महिलाओं को फिर हमें सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं का शरीर एक हार्मोन पर डिपेंडेंट होता है, ईस्ट्रोजन, जो कि पीरियड्स खत्म होने के बाद बॉडी से चला जाता है। महिला को अगर नॉर्मली वर्क करना है, जैसे कि वो अपने शरीर में शक्ति महसूस कर सके, उस केस में फिर हमें उन्हें सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है।
1: जी,
2: मैम, गर्भ धारण करने की बात चल रही थी, तो ऐसे में आपने टेस्ट बताए, टेस्ट के साथ में परेशानी सामने आ जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। पहले फोन कॉल ले लेते
0: जी
2: हैं। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: हेलो जी मैम, नमस्ते।
2: नमस्कार
3: मैं मुकेश कुमार भरतपुर राजस्थान से बोल रहा
2: जी। मुकेश जी, अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहिबा से।
3: जी सर, हमारी शादी को 5 साल हो गए।
2: जी
3: जी हमारी हो गए एम सी सही तरीके से महीने से नहीं होती है, और इस कारण हम पर कोई बच्चा भी नहीं है।
2: जी,
3: हमने बहुत दिखाया सर, हम बहुत परेशान हैं।
2: डॉक्टर साहब,
0: आपके वाइफ की उम्र कितनी है?
3: 30 साल।
0: 30 साल। सर, आपके ना ऐसे केस में कोई भी कारण हो सकता है, या तो अंडेदानी में अंडे बराबर ना होना, या कोई गांठ होना, या ट्यूब में ब्लॉक होना, या फिर आपके सीमेन सैंपल में कोई प्रॉब्लम होना। तो ऐसे केस में आप प्रॉपर किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके मुझसे आके मिल सकते हैं।
2: जी, आशा है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। डॉक्टर साहब, गर्भ धारण की बात चल रही थी, तो जब टेस्ट सारे प्रॉपर हो जाते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि ये समस्या है, तो ऐसे में लगभग ट्रीटमेंट कितने समय का होता है?
0: मैम, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉज मिल गया है, अगर जैसे मरीज़ की कोई गांठ है, अगर हम उसे निकाल देते हैं, तो ऐसे केसेस में यूजुअली मरीज़ अपने नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स में कंसीव यूजुअली कर जाते हैं। या फिर कोई ऐसा कारण है जिसमें महिला और पुरुष में कोई कारण ही नहीं मिल रहा है, जिसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ऐसे केसेस में भी कहा गया है कि अगले 3 साल में बिना कोई जाँच, बिना कोई ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे महिला और पुरुष कंसीव कर जाते हैं।
1: जी। हेलो हेलो हेलो
2: शायद किसी तकनीकी कारण से बातचीत नहीं हो पा रही है।
1: मैम, बढ़ती उम्र पर भी। हेलो हेलो
4: हेलो।
1: हाँ जी, अपना नाम बताइए।
4: हाँ जी, मैं लक्ष्मण सिंह बोल रहा हूँ भरतपुर से। सर,
1: जी लक्ष्मण जी, अपना प्रश्न पूछिए।
4: मेरा प्रश्न यह है कि औरत हो या मर्द हो, ये औरत कब तक, कितनी उम्र तक प्रेग्नेंट हो सकती
2: एक महिला कितनी उम्र तक प्रेग्नेंट हो सकती है?
0: सर, उम्र से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, ज़्यादातर उम्र जैसे कि आगे बढ़ती जाती है, जैसे 35 के ऊपर होती जाती है या 40 के ऊपर, तो जो AMH वैल्यू होता है, जो कि हमारी अंडेदानी में कितने अंडे हैं दर्शाता है, एक हमें रफ आइडिया देता है। अगर उसकी वैल्यू बहुत निम्न है, जो कि नॉर्मल वैल्यू से 1.5 से 4 हम जो मानते हैं, उससे भी कम है, तो ऐसे केसेस में कंसीव करने में दिक्कत होती है। अगर अंडा बन भी जाता है, तो ज़्यादातर केसेस में वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो या तो बच्चा रुकता ही नहीं है, या फिर रुक जाता है तो वो खराब होने की संभावना हो रहती है।
4: थैंक यू।
1: हाँ, तो मैम आप बता रही हैं।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार। हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम अवतार ज्ञान सिंह है।
0: जी ज्ञान सिंह जी, अपना प्रश्न
1: मैं
0: पूछिए।
1: फौजी आदमी बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी
1: मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर कि
0: पूछिए।
1: पत्नी जब गर्भवती हो जाती है, मंथली हो जाती है पत्नी, क्या मंथली में पति पत्नी के पास जा सकता है या नहीं?
2: पीरियड्स के दौरान हम मरीज़ जो मरीज़ होता है उसे मना करते हैं। ऐसे केसेस में बहुत बार जो ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो बैक फ्लो हो जाके आपके बॉडी में अकुमुलेट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, और इन्फेक्शन के चांसेस जैसे ट्यूब ब्लॉक वगैरह है, ये सब बढ़ा सकता है। बाकी इन्फेक्शन भी महिला को जैसे बच्चेदानी के मुँह का या वजाइना का या वल्वा का हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको आपस में साथ रहना अवॉइड करना चाहिए।
3: जी,
1: थैंक यू
3: आपने
1: सर।
3: हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत
1: मतलब ये
3: धन्यवाद।
1: सर कि ऐसा करना नहीं चाहिए।
2: नहीं
3: जी,
2: जी
3: नहीं करना चाहिए।
0: मैम, थायराइड या हार्मोन असंतुलन का भी गर्भावस्था पर कुछ प्रभाव पड़ता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल। थायराइड अगर किसी का असंतुलित होता है या फिर उसकी वैल्यू नॉर्मल नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, और कंसीव अगर हो भी जाती है तो ऐसे केसेस में अबॉर्शन के रिस्क हाई हो जाते हैं। इसके अलावा और भी हार्मोन्स, जैसे कि मैंने पहले बोला था, FSH और LH रेशियो, जो बेसिकली PCOD में डिस्टर्ब हो जाता
0: ठीक है।
2: है, उस केसेस में भी फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होती है।
0: हेलो मैम, अक्सर देखने में आता है, आप देख ही रहे हैं हम, कि हमारे चारों ओर मोबाइल फोन, लैपटॉप या गर्मी का असर, ये शुक्राणु पर कोई प्रभाव डालते हैं क्या?
2: बिल्कुल मैम। जैसे कि जो पुरुष लोग होते हैं वो अपना फ़ोन पैंट में रखते हैं या लैपटॉप अपनी लैप पे रखते हैं, तो उसमें कंटिन्यूसली रेडिएशंस रिलीज़ हो रहे हैं। वो इनडायरेक्टली आपकी टेस्टीज़ को अफेक्ट करते हैं, और उसके कारण जो उनका सीमन सैंपल होता है वो अफेक्ट होता है। बहुत बार उसमें जितने शुक्राणु होने चाहिए उतने नहीं होते, या फिर उनका जो लुक होना चाहिए, जैसे कि उनकी मोटिलिटी होनी चाहिए, या फिर उनके जो काउंट्स होते हैं, या फिर उनके जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं।
3: और मैम, इस बात को प्रायः लोग नहीं मानते हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं को अपनी केयर करनी चाहिए, स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, खान पान रहन सहन का ध्यान रखना चाहिए, इसी तरह से पुरुषों का भी दायित्व है कि वो अपना ध्यान रखें और इस तरह की चीज़, तनाव है, खान पान है, रहन सहन है, तनाव ना
0: को
3: रखें
0: दूर
3: जीवन में
0: रख,
3: किसी तरह का।
0: और
3: बिल्कुल, ये
0: फोन फोन और लैपटॉप को टेबल पर रखें, फोन को थोड़ा दूरी बनाए रखें।
2: बिल्कुल ये शोक की बात है कि अभी भी पुरुष वर्ग अपने अंदर कमी को पहचानने से इनकार करते हैं। होते हुए भी
0: हाँ,
2: हमारे
0: और
2: पास कई प्रकार के ऐसे मरीज आते हैं, और जिनके साथ सिर्फ महिलाएं, जो उनकी सास होती हैं, सिर्फ महिलाओं को लेके आती हैं और अपने बेटे के ऊपर कोई भी जांच नहीं कराना चाहती हैं।
0: हाँ,
2: तो
0: अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो सिर्फ महिला का ही इलाज किया जाएगा, महिला को ही दोषी ठहराया जाएगा।
2: जी
0: ये
2: बिल्कुल
0: अभी हमारे समाज में अभी भी ऐसी मानसिकता है जो
2: बिल्कुल
0: चली आ रही है, तो इसको तो तोड़ना ही चाहिए और पुरुष को भी ध्यान देना चाहिए।
3: जी मैम, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही बताया था कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे ऐप के माध्यम से ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रसारित होता है, जिससे मैसेज के माध्यम से श्रोता हमसे सवाल पूछते हैं। तो इसी तरह का एक सवाल आया है, नाम है मानसी अग्रवाल और इनकी उम्र है 25 वर्ष, और ये लिखती हैं कि पेट में दर्द होता है और पीरियड्स जो हैं वो अनियमित हैं, नियमित रूप से नहीं आते, हमेशा अपनी रेट से 5-6 दिन ऊपर हो जाते हैं, और बहुत परेशानी होती है, उबकाई आती है, और साथ ही साथ इस ड्यूरेशन से पहले चेहरे पे दाने दाने हो जाते हैं, तो क्या करें, सुझाव दें।
2: एक तो जी ये जो जिनका ये प्रश्न है, मुझे उनका जो वेट है, इन सब का भी बहुत बॉडी पे असर रहता है। अगर किसी महिला का वज़न ज़्यादा है तो उसके कारण भी उसके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण जिस प्रकार की ये समस्याएं वो बता रही हैं वो हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे एक्ने होना, या फिर चेहरे पे बाल होना, या फिर पीरियड्स ऊपर चढ़ जाना, या फिर पीरियड्स के दौरान दर्द होना। ये सब कहीं ना कहीं PCOD की तरफ इशारा कर रहे हैं, बट सिर्फ परेशानियां सुन के हम उसको लेबल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ जांचें होती हैं जो उनको अपने पास के डॉक्टर को जाके दिखा के, जांचें करवा के ही
3: जी
2: हम
3: डॉक्टर साहब, शादी नहीं हुई है, इन्होंने कुमारी

0: लिखा हुआ है नाम के
1: जी
0: आगे।
1: बिल्कुल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही किसी महिला को पीसीओडी हो सकता है। आजकल जो जीवन शैली है, खान पान है, बिल्कुल बाहर का जंक फूड खाना, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर फ़ोन में लगे रहना या फिर टीवी देखते रहना या लैपटॉप देखते रहना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये सब एक इनडायरेक्टली हमारी जीवन शैली को ख़राब कर रही हैं और हमारे हॉर्मोन्स को गड़बड़ा रही हैं।
2: पूरा स्वास्थ्य ही गड़बड़ जाता है।
1: बिल्कुल,
2: मैम, स्वस्थ गर्भधारण के लिए कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए?
1: आपको अच्छा खाना खाना है, घर का बना खाना खाना है, भोजन खाना है, आप उसमें मिर्च मसाले तला भुना कम से कम रहना चाहिए। बाहर का खाना महीने में एक बार आप खा सकते हैं, बस ज़्यादातर केसेस में उसे नहीं खाना चाहिए। पानी अच्छे से पीना चाहिए, आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीना चाहिए, या लिक्विड फॉर्म, कोई भी लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। एक व्यायाम का शेड्यूल बनाना चाहिए, रोज़ 1 घंटा या तो वॉक या फिर कोई लाइव फिजिकल एक्टिविटी जो आपके शरीर कर सके उतना आपको करना चाहिए। और स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट
2: हाँ,
1: फैक्टर है, स्ट्रेस
2: जो आजकल बहुत हो रहा है।
1: जो छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दे रहे हैं उसे अब ध्यान से हटाना होगा और तभी आप अच्छे से कंसीव कर पाएंगे और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
2: अच्छा मैम, भोजन में पोषक तत्व तो जरूरी है क्योंकि गर्भधारण के लिए माँ और बेटे बच्चे को जो भी है शिशु पेट में उन दोनों के लिए, तो भोजन में क्या क्या लें जिससे उनका बच्चा और वो माँ खुद स्वस्थ रहे?
1: ज़्यादातर हम केसेस में हम मरीज को बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश करिए, अत्यधिक पानी पीने की कोशिश करिए, बिकॉज़ अगर आप अच्छा खान पीन खाएंगे तो आपके जो सिर्फ ओवरीज की क्वालिटी है, जो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो खराब पदार्थ वहाँ बनते हैं वो कम बनेंगे, जिसके कारण वहाँ पे जो हमारा अंडा बन के आएगा वो अच्छी क्वालिटी का बन के आएगा और उसका गर्भ धारण करने में अच्छा रोल रहेगा और मरीज़ को अबॉर्शन के चांसेस या आगे अनहेल्दी बेबी के चांसेस कम हो जाएंगे।
2: अच्छा मैम, गर्भधारण की जो समस्या चली आ रही है अक्सर लोगों में आजकल देखने को बहुत मिलती है, तो इसको समय पर इलाज ना कराने से भविष्य में कभी आगे बड़ी परेशानी हो सकती है क्या?
1: गर्भधारण महिला की ज़रूरत है, अगर उसे गर्भधारण करने में समस्या आ रही है तो उसे 1 साल के बाद डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंडों की कमी बढ़ती जाएगी और ऐसे केसेस में उसे और गर्भधारण करने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे केसेस में हमें
2: समय पर
1: समय के
2: ही।
1: साथ डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए।
2: और मैम, जो बार बार गर्भपात होता है तो ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है या लापरवाही के कारण गर्भपात हो जाता है?
1: कई कारण हैं जिसके कारण गर्भपात होते हैं बार बार, जो कि चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं, जैसे पहले शुरू के 3 महीने और बाद के शुरू के 3 महीने। अगर
2: में ध्यान रखना है ज्यादा ना।
1: ध्यान रखना है, अगर किसी महिला को 2 या 3 2 से ज़्यादा बार गर्भपात हो गया है, ऐसे केसेस में कुछ इंजेक्शंस और कुछ दवाइयाँ एक्स्ट्रा दी जाती हैं, और उसके बाद भी अगर किसी को रिपीटेटिव मिसकैरेज हो रहे हैं तो ऐसे केसेस में हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, जो कि IVF के द्वारा ही संभव होती है, जिसमें हम पहले ही जो बच्चा बनता है उसकी जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं कि इसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में जेनेटिक ही बहुत बड़ा कारण होता है बच्चे का बार बार खराब होना। तो जेनेटिक टेस्टिंग, अगर बच्चा यूप्लॉयड होता है और उसको हम गर्भ में रखते हैं तो ऐसे बच्चे का पैदा होना ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है।
2: मैम, जेनेटिक मतलब?
1: जेनेटिक मतलब हमारा जो बॉडी है DNA से बना हुआ है, हर बॉडी हर सेल का एक
2: बिल्कुल,
1: DNA।
2: जैसे कि किसी माँ को प्रॉब्लम हो या सास को प्रॉब्लम हो तो बहू या बेटी को ऐसा हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं आप?
1: ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली में भी हेरिडिटरी हो सकता है कि किसी को मदर को है तो उसकी बेटी को वो ट्रांसमिट हो सकती है, बट यूजुअली केसेस में म्यूटेशंस हो जाते हैं। म्यूटेशंस मतलब जब वो अंडा बन रहा है या फिर वो बच्चा किसी के गर्भ में बन रहा है तो उसमें एनवायरमेंटल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ों के कारण जो DNA होना चाहिए उसमें खुद ही से ही बदलाव आ जाता है, और जिसके कारण वो बच्चा स्वस्थ नहीं होता, जिसके कारण कई सारी कंडीशन जो हम रूटीनली स्क्रीन करते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, तो ये सब चीज़ें बच्चे को ना हो ताकि बच्चा मंद बुद्धि या फिर कोई और सफरिंग के साथ पैदा ना हो।
2: हाँ मैम, अक्सर ये देखने में आता है कि एक महिलाएं जॉब की वजह से या किसी और कारण से भी लेट शादियां हो रही हैं, तो एक महिला को गर्भ धारण करने की सही उम्र क्या हो सकती है?
1: सही उम्र हम ज़्यादातर बोलते हैं जब भी शादी की उम्र 21 साल, जो कि सरकार ने बनाई गई है, 21 साल के बाद से 35 साल तक उनको बेसिकली 30 से पहले कंसीव कर लेना चाहिए, बिकॉज 30 के बाद उनको दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं और इवन 30 के बाद कंसीव करने में बच्चे को जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने भी बोला था,

0: जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होने की संभावना रहती है, तो हमें और डिटेल्ड स्क्रीनिंग करनी पड़ती है।
1: मैम एक प्रश्न ये आता है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं विवाह के बाद वो बच्चा इसलिए नहीं पैदा करना चाहती हैं कि उनका जो शरीर है वो बेडौल हो जाएगा, उनकी खूबसूरती पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इस मिथ को आप दूर कीजिए, हमारे श्रोता साथियों, हमारे मतलब रेडियो के माध्यम से श्रोता साथियों तक ये बात पहुँचे कि एक माँ बनना उसकी खूबसूरती क्या है, और ये जो शरीर को लेके मिथ है कि शरीर बेडौल हो जाएगा, खूबसूरती चली जाएगी, तो इसके बारे में।
0: ये बहुत बड़ी मिथ है सभी महिलाओं के बीच में। महिलाओं को सबसे पहले ये समझना होगा कि माँ बनना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, उसने एक अपना पड़ाव पार किया है। तो शरीर खराब होने के लिए तो कुछ भी नहीं है, उसमें सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो रिवर्ट बैक विद टाइम हो जाते हैं, वापस
1: जी
0: चले जाते हैं। और शरीर को टोन करने के लिए या फिर उसको दोबारा उसी शेप में लाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज
1: व्यायाम
0: हैं, जिम
1: एक्सरसाइज
0: है, डाइट है, आप करिए। आपने कितनी सारी हीरोइंस जो एक्ट्रेसेस हैं उनको देखिए,
1: बिल्कुल
0: सबके
1: बिल्कुल
0: बच्चे हैं वो बिल्कुल फॉर्म में हैं और लगातार अभी भी सुंदर दिखती हैं। ऐश्वर्या राय इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
1: और नहीं मैम ये तो प्राकृतिक का है, इसमें कोई
0: और
1: चेंजेस वैसा
0: बच्चा
1: नहीं
0: हो
1: है।
0: भी जाता है मैम तो उसके बाद फीड कराना नहीं चाहती हैं, बचना चाहती हैं, तो इस बात को भी क्लियर कीजिए। फीड कराना दोनों माँ और बच्चे दोनों के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और अच्छा है। इवन माँ को स्तनपान कराने से माँ का वज़न कम होता है, माँ को अपनी दोबारा जो पुरानी बॉडी थी
1: वो
0: उसमें
1: शेप में आती है,
0: बिल्कुल शेप में आती है, और माँ और बच्चे में आपस में एक जुड़ाव होता है।
1: बहुत सारी बीमारियों से भी
0: बहुत
1: हम
0: सारी
1: बचे रहते
0: बीमारियों
1: हैं
0: से माँ बची रहती है स्तनपान के कारण,
1: और बच्चा तो स्वस्थ रहता ही रहता है, सभी
0: बिल्कुल
1: जानते हैं
0: बहुत
1: कि माँ
0: सारी
1: का दूध अनमोल
0: इम्यूनिटी,
1: है।
0: बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारी फैट, सब कुछ बच्चे को मिलता है। तो माँ के मन में जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं स्तनपान को लेके, वो अपने डॉक्टर से बात करे, उनसे खुल के बात करे और उससे समझे और बच्चे को स्तनपान ही कराएं।
1: जी मैम, आपने PCOD, PCOS, UTI इन्फेक्शन, पेल्विक दर्द के बारे में और साथ ही गर्भाधान की जो समस्या है उसका कारण है वो भी आपने बताया और उसके निवारण को हमारे श्रोता साथियों को बताया। चलते चलते आप हमारे श्रोता साथियों से क्या कहना चाहेंगी, खासकर महिलाओं से, उन माओं से क्या कहना चाहेंगी जो परेशान है गर्भधारण को लेकर के या अन्य जो भी समस्याएं हैं, पेरीमेनोपॉज, उनके रहन सहन, खान पान, सबको मिला जुला के क्या कहना चाहेंगी?
0: सभी महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी कि आप का जीवन बहुत ही सुंदर है, आप उसे अच्छे से जिए। अपने जीवन में कोई भी तनाव हो उसे ना लें। अगर कोई भी परेशानी है उसके, आज के ज़माने में आपके आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जाके बात करें, उनसे समस्याएं पूछें, उनसे समझें, और आज के ज़माने में सारी समस्याओं का हल है। तो घर में बैठकर या उस समस्या का चिंतन करकर आपको कोई हल नहीं मिलने
1: बिल्कुल
0: वाला है,
1: बिल्कुल
0: अपने डॉक्टर से जाके बात करिए और अब हर परेशानी का हल लीजिए।
1: और अच्छा खान पान, नियमित
0: बिल्कुल
1: दिनचर्या, ये सब
0: अच्छा
1: तो
0: खान
1: आजकल
0: पान,
1: सब।
0: अच्छा खाइए, अपनी प्रेगनेंसी टाइम से प्लान करिए, काम को काम के समय पे रखिए और अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ
1: जी
0: रखिए।
1: जी
0: और सब चीज़ का समय होता है, उस समय को अगर आप गंवा देंगे तो आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें फिसल सकती
1: जी
0: हैं।
1: जीवन साथी एक दूसरे को सही समय दें तो
0: बिल्कुल
1: काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों से बता दें कि ये कार्यक्रम प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे सोमवार को दोपहर 1:15 से 1:45 तक प्रसारित होता है और कार्यक्रम में आते हैं विशेषज्ञ जो करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। चलते चलते यही कहना चाहूंगी बहनों, स्वस्थ शरीर खुशहाल जीवन की पहली पहचान है। जो खुद का ध्यान रखता है वही जीवन का असली आनंद पाता है। थोड़ा अपने लिए समय निकालिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खुद को संभालिए, इन्हें शिकायतों में नहीं खुशियों में बिताइए, क्योंकि बीता हुआ समय लौट कर वापस नहीं नहीं आता
0: आता।
1: है।
0: इसी विचार, इसी मनोकामना के साथ दीजिए अनुमति। उससे पहले डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए
1: हाय, आपका
0: और
1: बहुत
0: हमारे
1: बहुत
0: श्रोता साथियों को आपने
1: अच्छी सलाह
0: मार्गदर्शन
1: दी,
0: दिया, अच्छी सलाह दी, आपका बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अनुमति दीजिए उषा पांडे को और
1: और दुर्गेश भास्कर को
0: स्वीकार कीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

मैंने सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी उषा पांडे, दुर्गेश भास्कर और आज की विशेषज्ञ थी डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में ये गीत फिल्म धूम 3 से, आवाज इस गीत में सुनिधि चौहान की, संगीत प्रीतम का, शब्द अमिताभ भट्टाचार्य के।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म धूम 3 से ये नगमा, आवाज इस गीत में सुनिधि चौहान और साथियों की। अमिताभ भट्टाचार्य के गीत को संगीत दिया प्रीतम ने। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म दिल चाहता है से। आवाज इस गीत में सोनू निगम की, जावेद अख्तर के गीत को संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आपने सुना सोनू निगम को फिल्म दिल चाहता है में जावेद अख्तर के गीत को संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और हिंदी दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: आएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने

0: और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़े।

0: रहेगी। 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डेगो केश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म दिल से। आवाज इस गीत में सुरेश वाडिकर और अनुराधा पौडवाल की। समीर के गीत को संगीत दिया आनंद मिलिंद ने।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर अनुराधा पौडवाल को फिल्म दिल में। आइए सुनते हैं

समीर की शब्द रचना को अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वर में, फिल्म बेटा से ये गीत, संगीत आनंद मिलिंद का।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल, सुरेश जी हाँ, अनुराधा पौडवाल उदित नारायण और साथियों को फिल्म बेटा से अभी आपने सुना ये गीत। और आइए सुनते हैं फिल्म अंजाम का ये नगमा पूर्णिमा और साथियों के स्वर में। गीत समीर का, संगीत आनंद मिलन का।

और आइए सुनते हैं फिल्म डर से ये नगमा, कविता कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत शिव हरी का।

और लीजिए सुनिए अब फिल्म चांदनी सी नगमा। आशा भोसले विनोद राठौड़ के स्वर में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत शिव हरी का।

अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौर आशा भोसले को फिल्म चांदनी में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत शिव हरी का था। इसी के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारी प्रथम सभा भी यहीं संपन्न होती है। हमारी दूसरी सभा में संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 4:59 और 41 सेकेंड्स में हैं। अब हमारी आज की द्वितीय सभा आरंभ होती है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह एवं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदत्त पद्म पुरस्कार 2026 वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण।
1: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले

0: अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
1: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
2: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
1: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
2: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
1: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
2: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय, और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
1: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
2: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
1: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो-यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
2: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाव पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
1: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
2: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
2: guidelines.
1: श्री
2: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
2: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन्ड सो ओवर 6 decades.
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में

0: में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
0: Jaisalmer ke Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
1: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
2: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
2: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
2: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
0: Kumar Bose Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect
2: Shri
1: within the artistic
2: Janardhan
1: community.
2: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami
1: to Brahmadev
2: Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: Kesariya rang ka aapne safa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue is sant Padma Shri se sammanit hota hua.
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत

0: काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
1: In the digital era, Shri Chatterjee successfully reinvented himself through Hindi streaming projects like Jubilee, Scoop and Khaki.
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा।
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अलपुआ से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा।
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर सामाजिक
0: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Srimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ, आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
2: श्री तेची गुबिन समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। ही आल्सो लेड अ टीम ऑफ डेलीगेशंस टू मीट द वाइस प्रेसिडेंट टू रिपोर्ट ऑन द सिक्योरिटी।
2: डॉक्टर एच वी हांडे चिकित्सा।
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी की एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy
2: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस। हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज।
2: मीर हाजी कासम, कला ढोलक।
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। ही हैज आल्सो रिसीव्ड मेनी स्टेट लेवल

0: honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
1: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
0: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna, Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी।
2: एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri
0: well.
1: Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Rabbari, is 23-year-old khiladi ki T44 unchi kood mein vishv mein aap number one hai. और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू अक्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक्ड डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी।
1: देवबा लाड, दादा लाड, कृषि।
2: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्मे हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्री रंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन विच वॉज यूज बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 69 वर्षीय

0: डॉक्टर मंडल, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
1: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
2: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
0: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Budh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
2: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
1: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
2: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, कला कंथा एम्ब्रॉयडरी।
0: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangladeshi award.
2: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theater, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
1: Well, Shri Mukhopadhyay's writings on
2: theatre. Shri Satya Narayan Nandlal Nuwal, Vyapar Evam Udyog.
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nuwal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition.
2: श्री के पजानीवेल, खेल सिलंबम।
0: सिलंबम 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel has was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023, and he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसन पर आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निश्चित

0: निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hue aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
2: श्रीमती दीपिका रेड्डी कला नृत्य।
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: have borne fruit. श्री हरिचरण शाइकिया कला सत्रिया नृत्य।
0: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री
0: 86 साल के शास्त्री जी
2: साहित्य
0: देश के
2: एवं
0: संस्कृत विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also got

0: guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक.
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: श्री बलदेव सिंह खेल हॉकी कोच.
2: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं. एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है.
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाद मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट.
1: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन. उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह.
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत.
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: Ashok ji ne Bharat mein basmati chawal ki kheti ka kayakalp karne mein bahut bada yogdan diya hai aur is contribution ke liye आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का.
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स.
1: श्रीमती शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा.
2: आभारी श्रीमती शिव शंकरी जी की. आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में ख़ास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है. 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने.
0: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल.
0: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
2: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं. संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट. ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
1: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा.
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई

0: और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
0: तंजावुर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hai aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke Madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: Varishth kalakar hain aur 6 dashakon se zyada samay se aapne Gujarati rangmanch, Hindi television aur filmon ke kshetra mein kaam kiya hai.
1: Trivedi
0: kaale rang ka Jodhpuri suit pehna hua hai.
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals
2: and conferences. Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambhir Singh ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। अ पैशनेट एडवोकेट

0: of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
1: Shri Halley War, Samaj Seva.
2: अब बारी हेली वॉर जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं.

0: एक प्रतिष्ठित नाम है।
1: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स। His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please, may I have attention, please? I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे
4: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं आइए सुनते हैं देश गान

समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की।

0: विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे बागवानी, पौधे लगाने की तैयारी, मथुरा में कौन से फल वृक्ष लगाना लाभकारी। साथ ही आप सुनेंगे कृषि क्षेत्र में AI का उपयोग एवं किसान की जागरूकता, प्रगतिशील कृषक अंकित अग्रवाल से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। संध्या 6:45 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रजवार्ता, ब्रज में अधिक मास को महत्व। आलेख एवं स्वर होंगे मदन मोहन शर्मा के। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुनेंगे विशेष कार्यक्रम गंगा दशहरा। आलेख एवं वाचन स्वर होंगे जया आर्य की, प्रस्तुति ओपी सिंह की होगी। रात्रि 8:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश कान। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे दिल ही तो है फिल्म के कुछ गाने। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नाटक मारीची का, लेखक होंगे गंगानाथ चतुर्वेदी, प्रस्तुति डॉक्टर अचुला नागर की होगी। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गजाधर पाठक का रुद्र वीणा वादन, राग होगा जोग। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आपके विशेष अनुरोध पर, आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः आरंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओ, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं।

मथुरा से बाहर के श्रोता 05065 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र मथुरा। निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश पिन कोड है 2810003। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

समवेत सुरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी रचना के साथ ही देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मृणालिनी दीक्षित।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को मृणालिनी बहन की राम राम। भैया आज हम चर्चा करेंगे बागवानी पौधे लगावे की तैयारी हमें का का करनी चाहिए। बागवानी पौधे लगावे के तैयारी में भैया सबसे पहले बगीचे या खेत की मिट्टी की हमें जांच करा लेनी चाहिए। कहो जाए ना कि अगर माटी की जांच करा ली जाए तो उत्पादन दुगना है जावे। उचित दूरी पर गड्ढे खोदना चाहिए। गड्ढन को धूप में सुखाए कर जैविक खाद को प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद मिट्टी को मिश्रण भरें और अच्छे पौध को वामे रोपण करें। जाके काजे भैया भूमि और मिट्टी की तैयारी में विशेष ध्यान देना पड़े हैं। मिट्टी की जांच करवे के बाद पौधे लगावे थे पहले मिट्टी और पानी की जांच करावे थे। मिट्टी में का चीज़ की कमी है, का चीज़ डालना जरूरी है, किन किन पोषक तत्व की कमी हो गई है या पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, इस सब की जानकारी मिल जावे है। गहरी जुताई खेत या बगीचे की गहरी जुताई करके मिट्टी को कम से कम 15 दिन के काजे धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। जाते का हो कि भैया जब हानिकारक कीटाणु हो वो नष्ट है जामे। गड्ढन की खुदाई और भराई सही आकार में होना चाहिए। कम से कम कहो जाए भाई धूप लगाना और पौधे लगावे थे पहले 15-20 दिन अगर गड्ढे खोद कर छोड़ देंगे तो धूप में अच्छे से बाग सूख के अच्छे से जो पोषक तत्व हैं वहाँ में बने रहेंगे। खाद को मिश्रण गड्ढन में भरने हुए पौधे को चयन और दूरी अवश्य ध्यान रखना पड़े। पौधे से पौधे की दूरी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रखें जैसे पौधों को पर्याप्त धूप और हवा दोनों मिल जावे हैं। दूरी पौधों की दूरी जो बीच की दूरी होए वो फलदार वृक्षों आम अमरूद नींबू के बीच लगभग 15 से 20 फीट की दूरी अवश्य रखना चाहिए क्योंकि भाई उनको भी तो फैलवे के काजे जगह चाहिए और जगह अगर अच्छी मिलेगी तो उनको भाई फैलेंगे भी अच्छे तनी आते। रोपण को सही समय होना चाहिए। पौधे हमेशा संध्या के समय पर सुबह लगाना चाहिए या सुबह जल्दी लगाना चाहिए ताकि तेज धूप में इनको नुकसान ना पहुँचे। पॉलीथीन जो पौधे हम नर्सरी से लेके आए हैं वो पॉलीथीन में लगे रहे हैं बिनको हटा देना चाहिए। पॉलीथीन से बाहर निकाल के मिट्टी को हल्का सा ढीला करके तब लगाना चाहिए। पौधे को गड्ढों के बीचों बीच रखना चाहिए। ध्यान रहे कि पौधे की मुख्य जड़ जमीन का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल जमीन की सतह से ऊपर रहे और बहुत ज़्यादा गहरा नहीं दबाना चाहिए। पौधा लगावे के तुरंत बाद पर्याप्त मात्रा में पानी दे देना चाहिए ताकि मिट्टी अपने जड़न के चारों ओर अच्छी तरह से बैठ जाए वह पौधा पकड़ ले। अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो बागवानी पौधे लगावे में हम अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। ये तो रही भैया चर्चा। अब कार्यक्रम में आगे वर्तमान समय में जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है हमें बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारियाँ मिलती हैं। वैज्ञानिक अपने अपने अनुभव

साझा करें अपने ज्ञान से। हमारे खेती बाड़ी में भी बहुत नए नए तरीके हमें तकनीक से काम है जाते हम लाभ ले सके हैं। आज भी हम बाई के अंतर्गत आपको कृषि क्षेत्र में एआई को का प्रयोग है, किसान की जागरूकता कैसी है, जानकारी दिलवाएंगे। बात से पहले हम आनंद लेंगे पंडित राम स्वरूप शर्मा के सर में जा लोक गीत को।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं पंडित राम स्वरूप शर्मा के सर में जा लोक गीत को। अब हम आपको जानकारी दे पा रहे हैं अंकित अग्रवाल से, कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग एवं किसान की जागरूकता, इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: किसान भाइयों, एआई का कृषि में क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एआई का मतलब फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं, जो कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ही बनाई है। इसका पूरे संसार में आजकल बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको हम कृषि में भी बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, हम मौसम की जानकारी, सटीक मौसम की जानकारी एआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अनुरूप हम अपने कृषि कार्य विधियों को प्लान कर सकते हैं। क्या हमें किस टाइम करना है उसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमें लगानी है खेत में खाद और मौसम बता रहा है कि आज होनी है बारिश, तो हमें उस टाइम खेत में खाद नहीं लगानी है। उसी तरह से इसके कई सारे ऐप हैं एआई द्वारा कृषि के लिए, कई सारे ऐप डेवलप किए गए हैं जिनसे हम विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कि एक ऐप के माध्यम से हम अपनी फसल को दिखा के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी फसल स्वस्थ है या नहीं। अगर स्वस्थ नहीं है तो हमें उसमें क्या उपाय करने हैं, अगर उसको कोई रोग लगा हुआ है तो रोग के लिए कौन सा हमें छिड़काव करना है, कितनी मात्रा में करना है और कहाँ से उसके लिए हमें दवा मिल सकती है हमारे गाँव या जिले के आसपास से। और कई ऐप में तो ये भी पता चल जाता है कि उस दवा की कीमत कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। मान के चलिए 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में वो अलग अलग कंपनी की दवाई आती है, तो हमें उसका मूल्य भी पता चल जाता है। तीसरी चीज़, हम अपनी मृदा मतलब सॉइल के अनुरूप भी कार्य कर सकते हैं। एआई क्या होता है, बेसिकली सेंसर के माध्यम से एआई जानकारी हमारी मृदा की इकट्ठी करता है, उसके अनुरूप हमें बताएगा कि हमें कब कितना फर्टिलाइजर फसल के अनुरूप देना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान, हम सब किसान भाई एआई का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम स्मार्ट, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आह्वान किया था स्मार्ट बनो, हम स्मार्ट किसान बन जाएंगे। स्मार्ट फार्मिंग एआई के माध्यम से ही हो सकती है, जिसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि सेंसर का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी मिट्टी को देखते हुए, मृदा को देखते हुए ये भी यहाँ तक बता देते हैं कि हमारी फसल को कितना पानी कब चाहिए और कितनी बार हमें पानी देना होगा। तो हम ये जान सकते हैं कि हमें हमारी मृदा का स्वास्थ्य पता चल गया, कौन से न्यूट्रेंट की कमी है उसी हिसाब से हम फर्टिलाइजर देंगे, कौन सी फसल में क्या बीमारी है वो पता चल गया, मौसम की जानकारी मिल गई। तीसरा, हमारे फसल में अगर खरपतवार है तो ड्रोन नाम की मशीन जो कि एआई द्वारा ही संचालित होती है, उसका हम इस्तेमाल करते हुए कम कीमत में कम दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्प्रे करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये ड्रोन करता क्या है, ड्रोन में लगा होता है कैमरा और उसमें होती है टंकी दवा छिड़कने की, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। वो कैमरा देखता है कि फसल कहाँ प्रभावित हो रखी है, उसी अनुपात में वो स्प्रे करता है, चाहे वो खरपतवार नाशी का स्प्रे करे, चाहे वो फर्टिलाइजर का स्प्रे करे। जहाँ हमारे खेत में फसल

0: कमजोर होगी, वहां स्प्रे की मात्रा उस अनुपात में होगी, जहां हमारी फसल स्वस्थ होगी वहां छिड़काव उस अनुपात में ड्रोन करता है। तो अनुरूप क्या इसका सब समाधान क्या बन के आ रहा है, हम स्मार्ट बन रहे हैं। हम किसानों को जितना ज्यादा स्मार्ट बनेंगे किसान, उतना ज्यादा हम कृषि से लाभ अर्जित कर सकते हैं। तीसरी चीज, ड्रोन का इस्तेमाल हम लोगों ने कर लिया, अब हमें क्या है, हमारे फसल में कीट भी लगते हैं, कीट तक की जानकारी एआई के माध्यम से अलग अलग सेंसर को इस्तेमाल करते हुए हम एकीकृत कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने खेत फसल के बीचों बीच में सेंसर लगा दिया, अब कीट ने उसमें हमारी फसल में अटैक किया, जैसे ही वो अटैक करेगा तो सेंसर उसको भाप लेगा, एआई के माध्यम से उसका फोटो स्कैन होके हमें पता चल जाएगा किस प्रकार का कीट है और इसमें कितनी मात्रा में हमारी फसल में कीटों ने आक्रमण किया है, वो तक पता चल जाता है। उसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कितना, हमें कीटनाशक कौन सी मात्रा का इस्तेमाल, कौन सी कंपनी का, कौन सी मात्रा में, किस अनुपात में स्प्रे करना है, वो तक जानकारी हमारे को एआई के माध्यम से मिल जाएगी। तो सब मिला के क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, अगर हमारे को अपनी लागत कम करनी है तो हमें तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तकनीक के साथ साथ विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जानकारी हमें जो मिल रही है वो सही है या गलत है। इसीलिए आज के दौर में एआई बहुत ज्यादा आप देखें फसल में इस्तेमाल हो रही है, लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में, सब जगह इस्तेमाल हो रही है। अगर हम इसकी बात करें, लाइव स्टॉक की बात करते हैं, तो एआई क्या काम करेगा, अगर हमारे किसी भी पशु को कोई रोग लगा, रोग की हमने फोटो खींची और माध्यम से अपने एप्लीकेशन के माध्यम से उस पर अपलोड करी, तो हमें पता चल रहा है कि ये बीमारी इसको लगी है, इसका क्या उपचार होगा और हमारे सबसे करीब में कौन सा अस्पताल है जहां पर इसका सबसे बढ़िया इलाज हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको फसल में बताया था, फसल में भी ऐप के माध्यम से हम यही काम करते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के उस ऐप में अपलोड करते हैं, जिससे कि वो फोटो को तुलना करता है कि स्वस्थ फसल और हमारी फसल में क्या अंतर है, उसके आधार पे वो पूरा रिजल्ट हमको देता है। एआई हम लोगों द्वारा बनाया हुआ एक कृत्रिम बुद्धिता है, जिसके माध्यम में किया क्या गया है, पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं उसको एक जगह इकट्ठा किया गया है, तुलना करके स्वस्थ फसल, बीमारी वाली फसल, बीमारी फसल जिसमें आपकी न्यूट्रिएंट की कमी है, उस फसल की तुलना करके ये ज्ञान दिया जाता है कि हमें कौन से कार्य कौन से समय पर करना है, उसके हिसाब से ही हम लोगों को अपनी कार्यविधि जब हम करते हैं तो हम अधिक से अधिक लाभ एकीकृत कर सकते हैं।
1: भैया, अभी आप जानकारी ले रहे कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग एवं किसानों की जागरूकता जानकारी दे रहे अंकित अग्रवाल, इनसे बातचीत कर रहे ओपी सिंह। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आनंद दे पा रहे हैं प्रेमानंद शर्मा के स्वर में जालू गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे, प्रेमानंद शर्मा के स्वर में जा लो गीत को, मनमोहन मुरली वारों। भैया जा तेज गर्मी में हम अपनी रक्षा तो कर ले, मैं अपना ध्यान रख ले, मैं भैया।

0: तेज गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, बाहर ना निकलें, सिर ढक लें, कपड़ा पहन लें, छाता ले लें, लेकिन जो पशु हुए वे बेजुबान हुए और वे अपनी बात को बोलना सके हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना पशुपालक पालन करने वाले भैया बहन की जिम्मेदारी हुए। तो अगर हम उनको गर्मियों में ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उनसे अधिक से अधिक उत्पादन नहीं ले सकेंगे। तो गर्मियों में दुधारू पशुओं का आहार कैसा होना चाहिए?
1: है ये मुख्यतः दो तीन तरीके से देखा जा सकता है पशुओं में। एक तो पहला होता है कि सबसे पहले जो है कि वातावरण का तापमान कितना बढ़ गया है, वातावरण में ह्यूमिडिटी कितनी हो गई है, और सोलर रेडिएशन, इन तीनों की वजह से गर्मी का प्रभाव पशुओं पे सबसे अधिक पड़ता है। ये तीनों मुख्य कंपोनेंट है। पर जैसा कि आदमी में होता है, पशुओं का भी एक थर्मो न्यूट्रल इंडेक्स होता है, मतलब पशु किस टेम्परेचर कितनी ह्यूमिडिटी में सबसे अधिक उत्पादन दे सकते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम पशुओं को उस थर्मो न्यूट्रल इंडेक्स कंट्रोल टेम्परेचर पे रख सकें। तो गर्मियों में भी हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम ये एक टेम्परेचर थर्मो न्यूट्रल इंडेक्स पशुओं का मेंटेन रखें। और जबकि जब जैसे आप बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं के विषय में, गर्मियों का सबसे अधिक प्रभाव दुधारू पशुओं पर ही पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले गर्मी का प्रभाव किस में पड़ता है, सबसे पहले कि टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पशु खाना पीना सबसे पहले असर खाने पीने पे पड़ता है उसके। वह खाना पीना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ते ही उसका दूध उत्पादन न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है, न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है, साथ ही उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वह भी कम हो जाती है।
2: जी, तो कहवे वाली बात जी भाई, देखो मोटी बात जी भाई कि भैया गर्मी में जैसो असर जा हम इंसान पे पड़ चुका है ऐसो ही पशु पे पड़
1: पशु
2: चुका है।
1: पड़ता है।
2: क्रियाशीलता कम
1: हाँ
2: है जानते हैं,
1: जी,
2: पशु चारों कम खावे
1: कम
2: की
1: खाए,
2: कोशिश करते हैं, और जब खावे को कम तो साथ दूध तो कम ही देगा।
1: कम ही देगा।
2: तो ये बात जो है वो सबसे मुख्य कारण यही है कि भाई गर्मी में हम फिर अपने पशुओं का जें ऐसे आहार की व्यवस्था करें जाते के वाय कम से कम परेशानी हो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो।
1: उत्पादन
2: मुख्य बात तो यही है साहब के
1: बिल्कुल
2: पशुपालक भैया पे के दूध को उत्पादन बने रहे।
1: बन बने रहे बिल्कुल जी।
2: तो अब जे दूध को उत्पादन बने रहे तो वाय कौन से ऐसे पदार्थ हैं
1: हाँ जी,
2: जो खाइबे पीवे में दें?
1: इसमें सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गर्मी में मुख्यतः गर्मियों से बचाने के लिए पशु में दो तरीके उपाय अपनाने पड़ते हैं, पशु के खान पान की व्यवस्था साथ ही पशु का प्रबंधन, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर खान पान आप जितना भी अच्छा दे दें, अगर पशु में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वातावरण अधिक गर्म है, तो पशु वो जितना भी अच्छा खाना रहे वो नहीं खाएगा। इसमें सबसे पहले हम प्रबंधन की थोड़ी सी बात करते हैं, इसके बारे में आपको पशु आहार के बारे में बताऊंगा। सबसे मुख्यतः है प्रबंधन। प्रबंधन में आप पहले क्या करें, अगर प्रबंधन सही नहीं होगा पशु आहार नहीं खाएगा। पशु प्रबंधन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पशु के हाउसिंग, पशु का जहाँ निवास कर रहा है उसकी व्यवस्था कैसी है, पशु के लिए हवादार कक्ष है नहीं है, उसमें ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम रहे, ये सारी व्यवस्थाएं पशुशाला में होनी ही चाहिए। बिना उसके टेम्परेचर राइज होता रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती रहेगी, पशु आहार त्यागता रहेगा। अब हम जैसे पशु आहार की बात करते हैं, पशु आहार के दो मुख्य तत्व होते हैं, एक तो रेशेदार आहार और दाना आहार, जिसमें से रेशेदार आहार की मात्रा, जैसे कोई भी दुधारू गाय ले लें या भैंस ले लें, इसमें गाय के लिए ज़्यादातर हम 3 kg 3% सूक्ष्म आहार पशु को देते हैं, और भैंस के लिए 3 से 3.5% आहार पशु भैंस को देते हैं। इसमें से भी हम विभाजित करते रहते हैं कि हमें रेशेदार आहार कितना देना है और दाना कितना देना है।
0: तो भैया अभी आप जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर अमित सिंह से कि पशुओं का गर्मियों में आहार कैसा होना चाहिए, इनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए। इन्हीं जानकारी के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। चलते चलते अपने भैया को थोड़ी मौसम की जानकारी दे रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने के कारण बारिश की कोई संभावना ना आते हैं। 23 से 27 मई के बीच में गर्म रातें, लू चलने की संभावना रहेगी। मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भैयान को सलाह दी जावे कि वो खेतों में खड़ी फसलों को हल्की सिंचाई दें ताकि उनमें नमी का स्तर बना रहे, लू से सुरक्षित रहें। सिंचाई का काम संध्या के समय करना

चाहिए, पकी हुई फसलें, सब्जी की तोड़ाई कटाई सुबह या शाम को करें। सुबह 11 बजे से संध्या 4 बजे के बीच में खेतों में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। पशुओं को भी धूप से बचाव रखें। इन्हीं जानकारी के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मृणाल ने, दीक्षित ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप संजीव अभ्यंकर और साथियों के स्वरों में फिल्म दशावतार से संदीप खरे की यह भक्ति रचना सुन रहे थे। संगीत निर्देशन आनंद कुढ़ेकर का था। आइए अब सुनते हैं फिल्म चिंतामणि सूरदास से यशुदास के स्वर में संत सूरदास की रचना। संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का है।

यशुदास के स्वर में फिल्म चिंतामणि सूरदास से संत सूरदास की रचना आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था रविंद्र जैन का। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड से। रचना और स्वर हैं सौम्या के, संगीत निर्देशन संदीप चौटा का है।

सौम्य के स्वर में अभी आप सुन रहे थे बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म से सौम्य की रचना, संगीत निर्देशन संदीप चौटा का था। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के स्वर हैं, फिल्म का नाम है अंकुश।

पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ के स्वरों में अंकुश फिल्म का ये भजन आप सुन रहे थे। रचनाकार थे अभिलाष और संगीतकार कुलदीप सिंह। इसी रचना के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ब्रज वार्ता। विषय है ब्रज में अधिक मास को महत्व। आलेख एवं स्वर हैं मदन मोहन शर्मा के।
1: यस्मिन् मासे न संक्रांति यमेव वा मलमासः स्वविज्ञयो मासे त्रिसंत्वे भवेत। या तो रसो या अधिक मास लोद मास और पुरुषोत्तम मास या मल मास को नामते ये महीना जान्यो जाए। अब यह 17 मई 2026 से प्रारंभ है करके 15 जून 2026 तक चलेगो। या प्रकाश हो यह ज्येष्ठ को महीना अब दो पड़ेंगे। ज्योतिष गणित और फलित की चंद्र गणना के आधार पर सूर्य की एक ही संक्रांति में जब अमावस्या आ जाए तो दूसरी अमावस्या वाले महीने की वृद्धि हो है, वाते मलमास या पुरुषोत्तम मास बन जाए। यह महीना स्वामी रहित हो है, यही कारण सो यह निंदित है भी लग्यो हो। तब याने जाके प्रभु की शरण पकड़ी और भगवान ने प्रसन्न है करके याकू अपनो स्वरूप दियो और पुरुषोत्तम नाम दियो हो। नारायण ने यह भी कहो हो कि जो प्राणी या मेरे नाम के महीना में दान पुण्य धर्म कथा वार्ता सत्संग स्नान या परिक्रमा आदि शुभ कर्म करेंगे उनको मैं अनंत फल की प्राप्ति कराऊंगो और बाकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगो। अंत में वाको सदगति व मोक्ष धाम की प्राप्ति है जाएगी। भगवान ने स्वयं क्यों है अस्य समर्पित सर्व ये गुणा मई संसत पुरुषोत्तमोति मे नाम प्रथितम लोके वेदयो। यह वर्णन नारद पुराण में वर्णित है और अधिक मास के तीर्थाटन को विशेष महत्व है। तीर्थन में व्रत स्नान परिक्रमा और दान करने से प्राणी अनेक पापन से मुक्ति पा जाए और गोलोक में वासी बन जाए। हमारे ब्रज 84 कोष में या भारत को बड़े महत्व है। ब्रज परिक्रमा वृंदावन परिक्रमा गिरिराज परिक्रमा घेवरमन कोकलावन परिक्रमा आदि को हजारों श्रद्धालु बड़े भाव से झुंड के झुंड में भ्रमण करे हैं। ब्रज गोपियां भी यूथ के यूथ में दान पुण्य स्नान करती भई इन तीर्थन में राधा कृष्ण एवं देवी देवतान को वंदन और पूजन करती भई अपनी मनोती मनावे हैं। जगह जगह पर कीर्तन ध्वनि हो है, नाच हो, गान हो, भंडारे होते रहे, कथा सत्संग भजन और अन्य सांस्कृतिक एवं पारंपरिक साहित्य कार्यक्रम की धूम 2400 घंटा लगी रहे। भीड़ को ऐसा रेला को रेला बढ़ता जाए कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बस ट्रैक्टर आदि वाहन तथा रेलगाड़ी भरी की भरी मथुरा से कोसी आदि स्टेशन में रुके हैं और उनमें से हजारों श्रद्धालु भक्त नर नारी बड़े उमंग और उल्लास से भजन गाते हुए परिक्रमा करे हैं। ब्रज के प्रत्येक मंदिर में ठाकुर जी को नित्य नयो श्रृंगार हो है या अधिक मास में दोनों समय फूल बंगला बने हैं, ठंडक देवे के लिए सजावे हैं। जगह जगह जल की प्याऊ भंडारे वस्त्रदान छत्रीदान उपानदान चीनी दान पंखा दान और आदि होते रहे। या महीना में कोई कोई 30 वस्तुओं को दान करे है, कोई कोई 31 वस्तुओं को दान करे है, परंतु यह मलमास है। जासो या में गृह प्रवेश मुंडन संस्कार विवाह यज्ञोपवीत संस्कार बरकन्या वरण गृह आरंभ और वेद वेद या लौकिक कर्म आदि नहीं हो क्योंकि याकू मलमास के हो जाए। हमारी गणना की जो भारतीय पद्धति बड़ी सूक्ष्म है और सटीक है या के साथ साथ पूर्ण सामंजस्य को बारी है। शब्दतून के पूरे चक्र को हम सम्मत्सर कहे हैं। यह सम्मत्सर सूर्य के परिभ्रमण से निर्मित है। ऋग्वेद में सूर्य को ऋतुन को कारक बताया गया है। यह जब काऊ राशि में प्रवेश करे है तब वाकु सूर्य की संक्रांति कहो जाए है। तिथिन की उत्पत्ति चंद्रमा की कलांते हुए है या प्रकाश शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बने हैं और नक्षत्रन के आधार पर जो हिंदी महीना है वो बनाए गए हैं। जैसे चित्राते चैत बैसाखाते वैसाख ज्येष्ठाते ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ आदि या प्रकाश से इनको नामकरण भय हो। या के पश्चात सिद्धांत सरोमणि में बताया हुआ जब चंद्रमा के दोनों पक्षन की संक्रांति को अभाव है जाए वायु महीना को अधिक मास बन जाए और जब काऊ मास में 2 सौर संक्रांति को आनो है जाए तब वह 6 मास के हो जाए। तभी ब्रह्म सिद्धांत को या को स्वीकार करे हैं और प्रत्यक्ष देव सूर्य के राशि संक्रमण ते युक्त शुद्ध मास को हूँ सब मांगलिक शुभ कार्य को करवे के ताई श्रेष्ठ माने हैं। यह मल या अधिक मास सामान्यतः 2 वर्ष 8 मास 16 दिन और 4 घंटा बीत जाए पे आवे है। ज्योतिष गणित के आधार

पर 365 दिन 6 घंटा 11 सेकंड को सौर वर्ष मानो जाए, जबकि चंद्रवर्ष 354 दिन 9 घंटा को कहो जाए। इन दोनों के वर्षन के अंतर ही अतिक मास में पूरा कर लियो जाए। पुरुषोत्तम मास में तभी दान पुण्य धर्म को पूर्ण उल्लेख भयो है। धर्म को वास्तविक अर्थ सेवा और कर्तव्य कर्म करवो है। जो कर्तव्य कर्म करे हैं और धर्म को कार्य करे हैं, उनको संसार में सुख और शांति की प्राप्ति हो। जैसे कहो गया है, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम और सूर्यताम चाप धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तभी तो धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठाम और धर्मादर्श प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्व धर्म सार मेदम जगतः। अर्थात धर्म से धन की प्राप्ति हो है और धर्म से ही सुख की प्राप्ति हो, या प्रकार से शास्त्र बता में है। कशु शास्त्र में या अधिक मास को प्रादुर्भाव नरसिंह अवतार से मान्य हो जाए, या अवतार में भगवान विष्णु आधे नर और आधे सिंह बने हैं और भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और बाकी पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को उद्धार की हो। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास से हमें यही शिक्षा मिले है कि हम अधिक से अधिक सदगुणों को प्राप्त करके अपने में समाहित करें। जब हमारे उच्च आदर्श सदव्यवहार एवं वाणी उच्च विचारण के प्रभावित हेवी लग जाए, समाज में नई चेतना आवे है, सजगता प्राप्त हो, संरचना हो प्राप्त है जाए, तब सकारात्मकता की ऊर्जा ते हमारो पास पड़ोस प्रफुल्लित रहेगा। वाते नकारात्मक भावन को हमें कहीं पे जगह नहीं मिलेगी तो हमारी ये वृद्धि कही जाएगी और वासे हमारो नाम अपने आप पुरुषोत्तम कहो जाएगा। आपसी भाईचारों रिश्ते पारिवारिक संरचनाओं नई भावनाओं से भर के हमारे व्यवस्थान को अनुरूप आगे बढ़ जाए। जासो भारतीय संस्कार और संस्कृति मजबूत बने हैं, तभी तो हम पुरुषोत्तम की श्रेणी में आएंगे। या मास की यही भाव है। यह अधिक मास केवल चैत्र लेकर के क्वार अश्विनी मास तक ही पर है। ज्योतिष ग्रंथ में यही 7 माह वारी बारी ते पुरुषोत्तम मास बने हैं। एक वर्ष में 10 दिन कम है जाए, कोई तिथि बढ़े है और कोई तिथि घट जाए, या प्रकार से मिलकर के 10 दिन ही कम हो हैं। यासो वर्ष में जाकर के गणित और समय के गतिमान चक्र ते तथा सूर्य की चालते और पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ग्रहों एवं नक्षत्रों के आधार पर ही यह सटीकता से अधिक मास बन जाए। जैसे अब की बार ये 17 मई से प्रारंभ है करके 15 जून तक अधिक मास माना जाएगा। ये जेठ को महीना अधिक मास में है। आगे सम्मत 2085 में चैत्र को महीना अधिक मास में होएगा। सम्मत 2088 में भादो को महीना पुरुषोत्तम मास मनेगा। या के बाद सन 2034 सम्मत 2091 में आषाढ़ मास ये मल मास कहो जाएगा। सम्मत 2094 में सन 2037 में जेठ को महीना पुनः अधिक मास से प्रकट होएगा। और सम्मत 2096 में सन 2039 में क्वार महीना लौद महीना मानो जाएगो। सन 2042 या सम्मत 2099 में सावन महीना पुरुषोत्तम मास होएगो। या तरह सम्मत 2100 तक चैत एक आवेगो और 2028 में आवेगो। 21 से सम्मत तक बैसाख को अधिमास नहीं पड़ेगो। फलित के आधार पर चैत एक बार आवेगो, ज्येष्ठ 3 बार आवेगो, आषाढ़ 2 बार आवेगो, सावन को महीना 2 बार आवेगो, भादो भी 2 बार और क्वारहु 2 बार आवेंगे। या तरह सम्मत 2100 तक 17 साल में 12 अधिक मास आएंगे। आजकल 17 मई 2026 से ब्रज में, अयोध्या में, हरिद्वार में, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में या अन्य तीर्थन में ये श्रद्धालु भक्तन की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रत्येक मंदिर के या अधिक मास में वर्ष भर के सभी उत्सव मनाए जा रहे हैं। दीपावली, अन्नकूट, हरियाली तीज, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रंगीली होली ब्रज में मनाई जाएगी। पूरे हर्षोल्लास से विवाह को आनंद प्राप्त होगा। नित्य नए उत्सव, नित्य नई पोशाक, भंडारे, सजावट, विद्युत प्रकाश से फूल मंगला आदि शोभा पाएंगे। और एक विशेष बात महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया हो कि यह पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान को पाठ करना चाहिए। ब्रज में श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा, गोवर्धन में, बरसाने में गहवर वन की परिक्रमा और वृंदावन में यही परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। राधा कृष्ण की भक्ति चित्त शुद्धि और मन विकार रहित और शुद्धता को प्राप्त करावे है। याली भगवान कृष्ण सामीप्य को अनुभव प्राप्त करावे है। परिक्रमा करते हुए यदि या मंत्र को प्राणी जाप करे तो वह को मानव जन्म सफल है जाए। जैसे गोवर्धन धरम बंदे गोपालम गोपरूपणम गोकुलोत्सम ईशानम गोविंदे गोपका प्रियम। और दूसरी मुख्य बात या पुरुषोत्तम अधिक मास में बनी यात्रा को बड़ो महत्व है। या को दूसरा नाम ब्रज यात्रा है। क्यों ब्रज परिक्रमा यात्रा ब्रज स्थित गामन में, बनन में और राधा कृष्ण की लीला स्थलीन में है कि जाए है। नारायण भट्ट जी ने यह यात्रा 336

0: इस कोष की बताई है। ब्रजमंडल के विखरे भय वन उपवन बाग बगीचा ताल तलैया श्री राधा कृष्ण के लीला स्थली है। भवेशोत्तर पुराण में भी ये बात कही गई है कि पापन के उद्धार से या मुक्ति के ताई ब्रज यात्रा करे एवं सर्वहार सिद्धि प्राप्ति के लिए वन यात्रा ब्रज में करे तो वाक सदगति निश्चय प्राप्त होगी, जैसे बतायो है। आदो ते ब्रज यात्रांच कुर्यादवाय विमुक्तये ततस्तु वन यात्रांच कुर्यात सर्वसा सिद्धये। या प्रकार से पुरुषोत्तम मास मल मास या अधिक मास को हमारे ब्रज में और सभी जगह पर बड़ा महत्व है।
1: ब्रज में अधिक मास को महत्व। अभी आप सुन रहे थे ये ब्रज वार्ता, आलेख एवं स्वर थे मदन मोहन शर्मा के। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आपके विशेष अनुरोध पर, आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। टेलीफोन करने से पूर्व मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने का हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड है 281003। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा। अब से कुछ ही पलों में कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
4: इतनी भी क्या जल्दी थी,
3: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
5: और ये
6: मेरी गुड़िया के
7: नाम। पर दादी आपके नाम
8: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है, कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
7: शुभ शुभ बोलो क्या
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
10: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
1: शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह, जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर

0: में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट, दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना, दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
3: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
4: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी चोटियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। CHC, PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहाँ ट्रेनिंग्स दी गई हैं।
0: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी।

शाम सुहानी प्रोग्राम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, दिन भर की भागदौड़ और व्यस्तताओं के बाद जब संध्या अपने सुनहरे आंचल से धरती को ढक लेती है, जब आकाश में ढलते सूरज की लालिमा मन को सुकून देने लगती है, तब हम लेकर उपस्थित होते हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम शाम सुहानी। इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके प्यार भरे व्हाट्सएप संदेश, आपकी शुभकामनाएं, आपकी फरमाइशें और आपके दिल की बातें। तो अगले इस कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां शब्दों की मिठास भी है, संगीत का जादू भी और आप सभी श्रोताओं का स्नेह। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपका रेडियो हमसफर अरविंद कुमार। आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत संगीत में सफर की, इस प्यारे से गीत के साथ।

यशोदास की आवाज में ससुराल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए हैं सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुषिका। 36 पराली से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा का। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। दरियापुर भावली से महाराष्ट्र के श्रोता हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, द्वारा लेलवी सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही जोशी, हंसिका और अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट। पलहरी छत्तीसगढ़ से एक और संदेश, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे कुमार, संचित वायल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी और कल्पना।

कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा मोहाली से, टीडी मल्होत्रा शुभचंद्र बजाज कालका से, चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का संदेश। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नू लाल शिवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रज्जन हेमंत और धर्मदास बादवानी। कंचडुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा सरफराज, गुलफराज और मुस्कान। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलनाचा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर। श्रोतो, शाम का अपना एक अलग ही मिजाज होता है। दिन की थकान धीरे धीरे उतरती है और मन कुछ पल सुकून तलाशने लगता है। सांझ ढली तो यादों ने फिर दस्तक दी द्वार, मन के सोने आंगन में उतर आया प्यार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गोरा और काला फिल्म का नाम है, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गोरा और काला फिल्म का गीत आपने सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओ, शाम के केवल दिन का अंत नहीं होता है बल्कि नए सपनों की तैयारी भी होती है। इसे एहसास को संजे हुए कुछ संदेश हम तक पहुंचे हैं, आइए आप तक पहुंचाते हैं। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। डोंगरगांव से छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। संजय पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, शीर सागर, संजय कुमार चौहान मलकापुर के श्रोता। वरवट वकाल बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या और जय हागे। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी। आदर्श नगर बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल और पवनीत ग्रोवर। ब्रम्पटन कनाडा से निखिल भाटिया, नीति भाटिया और महरीन भाटिया। यवतमाल से राहुल मरवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया नारंग। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, टब्बू बब्बू। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी, प्रवीण और कलावती जोशी। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले। भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, हर्षदा, वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, सोनाली, प्रतीक्षा और स्वप्निल। रेयांश और इनके परिवारीजन भी हमारे साथ सुन रहे हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा का संदेश। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, पूजा, श्रव्य रामटेके। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, शारदा गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रूपा इलाहाबादी। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्षिल मल्होत्रा, लाटू कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। इनके साथ इनके ढेर सारे साथीगण सुन रहे हैं।

मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, जय और कुशेश्वर नाग, कांति भूलिया और रजनी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश अग्नेजा, पूनम, विशाल, दिशा, निमिता, हुजा। गांव गोपी की नगरिया मथुरा से मिठन लाल, सारस्वत, नेहा, नीरज, निकेता।

सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके परिवारीजन, नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन। नौधरा मथुरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा। कुमोद वन मथुरा से रमेश चंद्र सेन, सुनील, रचना, गब्बर और हाउसिंग बोर्ड भरतपुर राजस्थान से अजीत मोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके परिवारिकजन। श्रोताओ, दूर कहीं मंदिर की घंटियां, कहीं पक्षियों का लौटता कलरव और कहीं रेडियो पर बजते मधुर गीत, यही तो शाम की असली पहचान है। आइए शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों को सुनते हैं फिल्म मदर इंडिया के लिए।

टपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा और अंतरा सिंह। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार काले। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मोड़त। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसिता सुअर्णव, सत्यम, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। एटा उत्तर प्रदेश से नबी हसन, शहनवाज, नवेद हसन, रसीद, सुहेल, अनम और यशफ। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाहत परवीन अब्बासी, शहबाज, सरफराज, फरदीन सुहन, अर्चा नबान और इनके परिवारजन। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का संदेश। और नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म मदर इंडिया के लिए। शकील बदायूंनी की रचना थी, नौशाद का संगीत निर्देशन था। बहुत तीव्र गति से संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं कुछ श्रोताओं के प्यार भरे संगीत का। एक जो आनंद है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और कुछ शिकायतें, और शिकायतें स्वाभाविक हैं। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर है। लेकिन हम श्रोताओं से इतना अवश्य कहेंगे कि आपके संदेशों से महक रहा है ये गुलशन, आप ही से रोशन है हमारा ये मधुबन। कुछ संदेश हम अवश्य शामिल करेंगे अभी। बरेली मध्य प्रदेश से हुकुम कमरकर, करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनिया। बुंदेलखंड महोबा के श्रोता हैं जयपाल यादव।

आशा भोसले और साथियों को आप सुन रहे थे जवानी की हवा फिल्म के लिए। श्रोताओं, ढल गई शाम मगर रिश्तों का उजियारा रहे, गीत रुक जाए भले दिलों में ये नज़ारा रहे। बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं, लगातार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस कार्यक्रम को आगे यूं ही जारी रखें। फिलहाल अरविंद को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम गंगा दशहरा। आलेख एवं वाचन सुर हैं जया आर्य की, प्रस्तुति ओपी सिंह की है।

0: गंगोत्री की निर्मल धारा में जो कल कल छल छल शब्द बहें, काशी की पावन लहरों में पल पल विश्वास का अर्थ मिले, कहीं अतुकांत सी बहती हो, कहीं छोर नहीं कोई और नहीं, कहीं बहती हो हर तुक में तुम, हर शब्द अर्थ का भाव लिए। गंगा तुम स्वयं वो कविता हो, जिसमें कविता का अर्थ मिले, जिसमें कविता का अर्थ मिले। आज का ये पावन दिन गंगा का पृथ्वी पर आगमन का दिन है। माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण राजा भागीरथ की कठोर तपस्या का ही परिणाम था। अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। गंगा का पवित्र जल रसातल में स्थित भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श कर गया, जिससे उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस पावन घटना को प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है।
1: हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के राजा हुए। राजा सगर की दो रानियां थीं, केसानी और सुमति। दोनों में से किसी भी रानी से राजा की कोई संतान न थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा सगर ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए, जिसके फलस्वरूप रानी केसानी से एक पुत्र प्राप्त हुआ अश्वमजस, और दूसरी रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ साल बाद राजा सगर ने अपने राज्य विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। प्रचलित यज्ञ विधान के अनुसार अश्व को पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की ओर खुला छोड़ दिया जाता था। यदि यज्ञ के अश्व को किसी अन्य राजा की सेना ने पकड़ लिया तो उसे युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध में जो विजेता होता था उसको पराजित राज्य पर अधिकार हो जाता था। इस प्रकार राजा सगर ने सभी राजाओं को बताने के लिए अश्व को मुक्त विचरण के लिए छोड़ दिया। यज्ञ की रक्षा का भार उनके 60,000 पुत्रों ने संभाला। इंद्रदेव नहीं चाहते थे कि यह यज्ञ सफल हो, इसलिए उन्होंने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात महर्षि कपिल वहां तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चल रहा है। उन्हें देखकर वे चोर चोर चिल्लाने लगे और उनका ध्यान भंग कर दिया। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सभी 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के श्राप से भस्म हो गए। सगर के वंशज श्रापित हुए। अपने पूर्वजों की मुक्ति का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी से यह संभव नहीं हुआ। आगे जाकर राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ ने मृत पूर्वजों का श्राद्ध करके उनका उद्धार करने का निश्चय किया, परंतु इस कार्य के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था, क्योंकि श्राप के प्रभाव से जल के स्रोत भी सूख चुके थे। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तथा प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाने के सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया। भगीरथ से तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा की धरती पर अवतरण की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा, राजन तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए यह उचित होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से

0: होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध लीं। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा की जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान किया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार गंगा की पवित्र धारा के प्रवाह में सभी भगीरथ के सभी पूर्वजों की राख बह गई और उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई। माँ गंगा के अवतरित होने से धरती फिर से हरी भरी और उपजाऊ हो गई और प्रजा भी सुखी हो गई।
1: दशहरा, इस शब्द का अर्थ है 10 पापों का नाश करना। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा, जिस पर हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा करते हैं और ऐसा करने से उनके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। उन्हें केवल नदी ही नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजा जाता है।

राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने हिमालय पर वर्षों तक कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने पृथ्वी पर आने की सहमति दी, परंतु उनके वेग को सहन करने की शक्ति धरती में नहीं थी। तब उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की।

शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को रोक लिया और उन्हें एक शांत और निर्मल धारा के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया और तभी से गंगा नदी लोगों के लिए आस्था और जीवन का स्रोत बन गई। गंगा दशहरा के दिन लोग प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही दान पुण्य करते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर विशेष मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भक्तजन दीपदान करते हैं और माँ गंगा से सुख समृद्धि तथा शांति की प्रार्थना करते हैं।

गंगा नदी भारत की संस्कृति, कृषि और जीवन का आधार है। ये हमें जल प्रदान करती है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा भी यही है। इसीलिए हमें गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प लेना चाहिए। गंगा दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ये पर्व हमें पवित्रता, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम गंगा दशहरा, आलेख एवं वाचन स्वर थे जया आर्य की, प्रस्तुति ओपी

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम देश गान का। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति परक रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में चंद्रदत्त इंदु की लिखी ये देशभक्ति परक रचना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

त्रिलोक कपूर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे रिफत सरोश की ये देशभक्ति परक रचना। इसी रचना के साथ ही देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से

श्रोताओं, आज जिस फिल्म के गाने हम आपको इस प्रोग्राम में सुनवाने वाले हैं, वर्ष 1963 की चर्चित संगीत प्रधान फिल्म दिल ही तो है, जिसका निर्देशन सीएल रावल ने किया था। फिल्म में राज कपूर, नूतन प्राण और रहमान जैसे कलाकारों ने अभिनय किया, जबकि इसके मधुर और कालजयी गीतों को संगीतबद्ध किया था रोशन ने। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और स्वरों को जादू बिखेरा मोहम्मद रफी, मुकेश, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म की कहानी प्रेम, पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द घूमती है। आइए कहानी के साथ सुनते हैं इस फिल्म के और बेहतरीन गाने। श्रोताओं, कहानी शुरू होती है युवा और प्रतिभाशाली गायक यूसुफ से, जो एक साधारण परिवार से जुड़ा होता है। संगीत उसका जुनून है और अपनी प्रतिभा के बल पर वो लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहता है। इसी दौर उसकी मुलाकात एक प्रतिष्ठित नवाब परिवार की युवती जमीला से होती है। दोनों के बीच आकर्षण जन्म लेता है और धीरे धीरे ये आकर्षण प्रेम में बदलता है, लेकिन सामाजिक हैसियत और पारिवारिक मर्यादाएं उनके प्रेम के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं। यूसुफ का मन प्रेम की भावनाओं से भर उठता है और वो अपनी प्री के सौंदर्य और उसके प्रति अपना आकर्षण को शब्दों में ढाल देता है। आइए सुनते हैं फिल्म का पहला लोकप्रिय गीत।

परीक्षा होने लगती है। जमीला के मन में प्रेम तो है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की बंदिशें उसे असमंजस में डाल देती हैं। इन्हीं भावनाओं के बीच प्रेम की मासूमियत और उसकी मधुर अनुभूति को व्यक्त करता फिल्म का एक और अमर गीत आइए सुनते हैं।

श्रोताओ, कहानी आगे बढ़ती है। जमीला और यूसुफ का प्रेम गहराता जाता है, लेकिन जमीला का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यूसुफ की सादगी और प्रतिभा के बावजूद उसकी सामाजिक स्थिति उसके खिलाफ खड़ी दिखाई देती है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों के प्रेम

श्रोताओ, कहानी अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। कई उतार चढ़ावों, गलतफहमियों और सामाजिक संघर्षों के बाद सच्चाई सामने आने लगती है। यूसुफ के व्यक्तित्व और उसके संस्कारों की पहचान होती है। परिवारों को ये एहसास होने लगता है कि इंसान की असली पहचान उसकी हैसियत नहीं, बल्कि उसका चरित्र और उसकी प्रतिभा होती है। धीरे धीरे विरोध के स्वर शांत तो होने लगते हैं और प्रेम अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। इन भावनाओं को प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्त करता है फिल्म का एक अत्यंत मधुर गीत। आइए सुनते हैं।

0: Yo todo. फिल्म दिल ही तो है की कहानी हमें ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम सामाजिक बंधनों और बाहरी दिखावे से कहीं ऊपर होता है। प्रेम, विश्वास और मानवीय मूल्यों की जीत अंततः हर बाधा को पार कर लेती है। राज कपूर और नूतन की सशक्त अदाकारी, रोशन का मधुर संगीत और साहिर लुधियानवी के अर्थपूर्ण गीत इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की यादगार कृतियों में शामिल करते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से यही समाप्त होता है। आशा है कि इस फिल्म दिल ही तो है के सदाबहार गीत और इसकी भावपूर्ण कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी अरविंद को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र

0: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
5: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी

0: डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक

0: में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
2: Against the assessment of
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
2: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को

0: मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सू से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ. एन. राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heat wave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky

आशा भोसले की आवाज़ में फागुन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार जलालाबादी के बोध थे, ओपी नैयर का संगीत निर्देशन था। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हेमलता की आवाज़ में, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नाम है, गीतकार हैं अनजान, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

हेमरथा की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे अनजान और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाने तराने। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म का ये गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुहाने तराने कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश शमा तक पहुंचा रहे हैं मेरे महबूब फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे महबूब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036

0: तीस तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहां पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड केरियाटिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक OTP आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स हैं वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर।
0: तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें OTP आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
1: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे OTP आएगा
0: जी
1: कि हमारे जेरे

0: ऑटोमेटिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा, इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू भी,
1: डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस, के लिए क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है, कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लैट्रिन बाथरूम बिठाने के लिए भी।
1: जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी। जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे, कि जैसे जो कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी थैंक यू कमल कांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से, कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहां पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी। और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी

0: संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी, आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विद ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी?
0: जी, इसका इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी,
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: जी, और जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुँच बना सकते हैं। मेरा इसमें एक इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पा रही है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी,
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है, तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मुनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी। हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ आप

0: आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई, और जैसे आयुष्मान योजना है तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
1: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसकी उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
0: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध हैं, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे
1: जी
0: वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो
0: हेलो,
2: हेलो,
0: नमस्कार
2: नमस्कार
0: श्रीपद जी, स्वागत है
2: मैडम
0: आपका कार्यक्रम में।
2: जी। धन्यवाद। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ
0: जी
2: और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है, मतलब हम लोगों को?
0: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
1: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन होम से?
0: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ,
1: अच्छा,
0: उन्होंने बताया वृद्धाश्रम में।
1: वृद्धाश्रम से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
0: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो? क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
1: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए,
0: जी
1: तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिस पे आप डायरेक्टली लॉन्च करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ।
0: जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान है, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका कोई भी दुविधा है तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार,
3: आप सभी लोगों को आगामी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी धन्यवाद
3: जी। और जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
1: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
0: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी।

तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम, या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

0: इष्ट नागरिक तक पहुंचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: मैं राजकुमारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
1: जी,
2: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
2: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स है उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
3: जी नमस्कार।
1: आपका सवाल?
3: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
0: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 अच्छा, में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने, मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने।
1: जी राजेश नेमा जी।
4: जी
1: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
4: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी,
4: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो स्थिति में ऐप का, हालांकि

0: मैम ने बताया कि नंबर ही है 1 4 5 6 7, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है मोनाली जी?
1: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं
0: जी। तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
1: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए। तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए। तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है। तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
0: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
1: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
0: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: आइए सुने गंगानाथ चतुर्वेदी का लिखा नाटक मारीचिका। इसकी प्रस्तुत करता है डॉक्टर अचला नागर।

0: क्या खटपट मचा रखी है? क्या रेडियो को तोड़ना है कुंतल?
1: लगता है सेट में कुछ हो गया है।
0: हो गया होगा, अब बंद करो ना। बाबा सारे स्टेशन बंद हो गए हैं।
1: ओ नो वाजवी, तुम समझती रही। मैं सब फॉरन स्टेशन ट्यून कर रहा हूँ, अभी सब बोल रहे थे, मगर सहसा अब एक स्टेशन भी नहीं आ रहा।
0: हाँ, तो फिर अब रेडियो में खराबी हो गई होगी।
1: तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं कहता हूँ कुछ खास वजह हो गई है।
0: खास वजह?
1: हाँ, लगता है जैसे सभी स्टेशनों की जैमिंग कर दी गई।
0: इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है?
1: यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है।

0: अच्छा इधर अपना 20 रुपये देना।
1: ये लो। तुम्हें क्या कुंतल, मैंने कहा गर्मी के दिन है, जरा सो लो ना।
2: मैं कहती हूँ कुंतल, मेरे ट्रांसफर की ठोकाबेटी मत करो। ये काम करना है तो अपने रेडियो सेट पर ही करो। हाँ
0: वासवी, जरा समझने की कोशिश करो।
1: मुझे नींद आ रही है और तुम्हें ठक ठक सूझी है। अरे मान लो कुछ एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस की वजह से ये जैमिंग हो गई होगी, और हो भी गई तो तुमको क्या लेना देना।
0: वासवी क्या कहती हो, क्या इस अनहोनी घटना को इस तरह नजरअंदाज किया सकता है?
1: जी जनाब, मान लिया। आप नजरअंदाज नहीं कर सकती। मगर श्रीमान, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस हालत में आप इस जैमिंग के बारे में जानकर क्या कर लेंगे भला? हाँ, और आप अगर इसका कारण जान भी लें, मान लीजिए आपने जैमिंग का रीजन भी लोकेट कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे?
0: वासवी बात समझने की कोशिश करो ना। इस समय कोई वार चल रही है कि कोई देश किसी देश के ब्रॉडकास्ट को जैमिंग करे। आइनोस्फीयर में भी किसी प्रकार के डिस्टरबेंस की कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं देखी सुनी, फिर आखिर ये जैमिंग कैसी?
1: अब मुझे खासी चिंता होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि तुम पर फिर किसी रिसर्च का भूत सवार होता जा रहा है। मगर कुंतल, मैं तुम्हें इस पचड़े में हर किस नहीं पड़ने दूंगी।
0: वासवी, क्या वाकई अब तुम्हें किसी भी साइंटिफिक परस्यूट में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई?
1: कुंतल, मत उन खावों को करे दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे।
0: इसका मतलब कि तुम मुझे धोखा दे रही?
1: धोखा?
0: हाँ धोखा। फॉरेन से लौटने के बाद तुम्हें सब कुछ छोड़ चुका था। तुम्ही ने मुझे कसम खिलाई थी ना, तुमने मुझसे वादा करवाया था ना कि उस घटना के बाद मैं इस जीवन में कभी किसी साइंटिफिक रिसर्च में हाथ नहीं लगाऊंगा। बोलो।
1: हाँ।
0: तो फिर तुमने स्वदेश आने के मात्र 6 महीने बाद ही माइग्रेटरी बर्ड्स की फ्लाइट्स के रास्तों को ढूंढने के लिए क्यों प्रेरित किया? क्यों तुम्ही ने कालिदास के मेघदूत का पौधा खोलकर माइग्रेटरी बर्ड्स के क्रौंच रंध्र से आने जाने की बात बताई थी ना, और फिर तुम्ही ने उस क्रौंच रंध्र को ढूंढ निकालने का प्रोजेक्ट मेरे लिए तय नहीं किया था क्या? मैं पूछता हूँ, तब उस समय तुम्हें मुझ पर रिसर्च का भूत चढ़ते नजर नहीं आया था? और आज आज जब इस रेडियो जैमिंग का मसला मेरे अंदर के वैज्ञानिक को ललकार रहा है तो तुम मुझे रोक रही हो? ये धोखा नहीं तो और क्या है? बोलो।
1: नहीं कुंतल, नहीं कुंतल, ऐसा मत सोचो। मैंने देखा कि विदेश से लौटने के 6 महीने बाद तुम एकदम से बुझते नजर आए। मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जान सकता है कुंतल। मैंने देखा, देखा ही नहीं, मैंने अनुभव किया कि तुम बिना किसी खोज के जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए मैंने इस इनोसेंट साइंटिफिक रिसर्च को तुम्हारा ध्यान दिलाया। मैं चाहती थी कि पक्षियों में तुम रम जाओगे तो हर सूरज का उगना तुमको चहकाएगा और सूर्यास्त तुम्हें बच्चों की तरह शांत करके सुला देगा। तुम्हारी लय भी प्रकृति होगी और फिर तुम उसी में लीन हो जाओगे। तुम प्रकृति के जितने करीब होगी उतना ही करीब तुम्हें मैं अपने से पाऊंगी कुंतल।
0: बंद करो ये कोरी भावुकता। अगर तुम्हारा उद्देश्य यही था तो फिर तुमने मेरे बाइनाकुलर खरीदने पर इतना कलेश क्यों किया था? क्या मैं पक्षियों का ऑब्जर्वेशन नेकेड आई से करके रिसर्च कर सकता था?
1: हाँ, मैंने तुम्हारा बाइनाकुलर खरीदना कभी पसंद नहीं किया। पूछो क्यों? वो इसलिए कि तुम में गृहस्थी के मामले में सेंस और प्रोपोर्शन नाम की चीज रखती, पर नहीं इसलिए। आज इतने दिनों से खाली बैठे हो, कोई नौकरी मिली? ये तुम्हारा बैंक बैलेंस आखिर कब तक चलेगा?
0: तो मैं क्या करूं? इस मामले में तुम्हें मेरा सिद्धांत मालूम ही है, मैंने आज तक कभी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया।
1: मगर तुम क्यों भूलते हो कि तब तुम विश्व के जाने माने वैज्ञानिक थे, मगर आज कुछ भी नहीं। क्या किसी कॉलेज में प्रोफेसरशिप की जगह के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी ये डिग्रियां सिर्फ रिसर्च के लिए हैं?
0: कुछ भी हो, अगर हमारा देश प्रतिभा का आदर नहीं कर सकता तो मुझे भी इस देश में प्रतिभाशाली होकर नहीं रहना, एक साधारण व्यक्ति की तरह जीना है।
1: और फिर दर दर की भीख मांगना है, आखिर जिंदा भी तो रहना है कुंतल।
0: इसके लिए दोषी मैं नहीं तुम हो। तुम ही मुझे विदेश की इतनी संपन्न और प्रतिष्ठा की नौकरी छुड़वाकर यहां लाई हो, तो फिर भोगो।
1: कुंतल, क्या तुम इतने कायर हो गए हो?
0: शायद।
1: बाकर जीने के लिए क्या करोगे?
0: मर जाएंगे।

0: अरे देखो कोई बाहर आया है।
1: होगा कोई।
0: मैं कहता हूँ देखो ना जाकर कोई अपनी कॉल बेल दबा रहा है।
1: बजाने दो, किसी मरे आदमी का पता पूछ।
0: कुंतल क्या बकवास है कुंतल, देखो ना जाकर कौन है।
1: हाँ हाँ जाता हूँ, चिल्ला भी क्यों हो।
2: Yes, what can I do for you?
3: Well, इस मकान में कोई मिस्टर कुंतल रहते हैं?
2: जी अब नहीं रहते।
3: मतलब अब इस मकान में नहीं रहते?
2: जी नहीं,
3: गोया पहले रहते थे।
2: जी
3: क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ गए?
2: मालूम है, जहन्नुम में।
3: What?
2: जी हाँ अब वो मर गए थे।
3: मगर सुनिए सुनिए सुनिए मिस्टर, अरे आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर?
0: कुंतल कुंतल कुंतल कुंतल, मैं उनकी वाइफ हूँ।
3: एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है आप दोनों में अभी कुछ।
0: छोड़िए आप अंदर तो आइए।
3: थैंक यू। हुआ यह कि आपके दरवाजे पर अभी चंद लम्हों में कुछ वाकयात ऐसी डबल स्पीड से गुजरे कि मैं तो सारी फॉर्मेलिटी भूल गया था।
0: लगता है आप विदेशी हैं।
3: जी हाँ, जाहिर है कि मैं एक विदेशी हूँ।
0: मगर आपकी ये टकसाली हिंदी।
3: देखिए ऐसा है कि मेरा पूरा नाम रॉबर्ट माइकल है, वैसे मैं एक विदेशी नागरिक हूँ मगर पैदा इसी हिंदुस्तान के शहर इलाहाबाद में हुआ था। बाप अंग्रेज था और माँ देसी क्रिश्चियन। लोग कहते हैं शक्ल बाप से मिली और अक्ल माँ से। मैं समझता हूँ मेरी हिंदी के जानने के बारे में सफाई के तौर पर इतना बायोडाटा काफी होगा। ओ सॉरी, लगता है कुछ ज्यादा ही बोल गया।
0: चलेगा, मगर जनाब ये तो बताइए कि आपका आना किस सिलसिले में हुआ?
3: देखिए मिसेस कुंतल, बात यह है कि मैं अपने देश के एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र डेली मॉर्निंग का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। मिस्टर कुंतल से एक इंटरव्यू लेने आया था।
0: ओ तो आप पत्रकार हैं? सुना है विदेशी पत्र लोगों को इंटरव्यू का खासा पैसा देते हैं।
3: और इसीलिए उनके पत्रों का स्तर भी बहुत अच्छा होता है।
0: मगर आप कुंतल से क्या पूछना चाहते हैं?
3: कुंतल से? जी हाँ मिस्टर कुंतल से, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, वो न सही आपसे ही सही।
0: अच्छा तब तो आप रुपए भी मुझे ही देंगे। हाँ पूछिए।
3: देखिए मिस्टर कुंतल ने अपनी विदेशी नौकरी क्यों छोड़ी? वो वहां टॉप के साइंटिस्ट थे, अच्छा पैसा मिलता था, खासी इज्जत थी, अपनी प्रतिभा के प्रयोग का पूरा मौका मिल रहा था, यानी सारी सुख सुविधाएं थी। मगर वो क्या वजह थी कि इतनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो अपने देश वापस लौट आए?
0: मिस्टर रॉबर्ट आप पत्रकार हैं या विदेशी गुप्तचर एजेंट?
3: ये लीजिए।
0: रहने दीजिए अपना आइडेंटिटी कार्ड, इसकी कैफियत मुझे खूब मालूम है। कुंतल जब विदेश में अपनी महत्वपूर्ण रिसर्च की वजह से उस देश के वैज्ञानिकों में अपनी धाक जमा चुका था तो आपकी तरह एक पत्रकार महोदय उनसे मिलने आए। मैंने उन्हें जलेबी खिलाई, जब उसका शीरा टपकने लगा तो अपने कपड़ों को बचाने के लिए वो नीचे झुक गए और उस समय उसके अंदर की जेब से उसका आइडेंटिटी कार्ड गिर गया। मैं जब उठाकर उसे देने लगी तो पता चला कि वो कार्ड उस देश के गुप्तचर विभाग द्वारा इशूड था। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है आप गुप्तचर एजेंट हो या पत्रकार, आप तो मेरे इंटरव्यू की फीस देंगे ही।
3: लगता है आप पैसे को चेहरे पकड़ती हैं।
0: जी हाँ, जब आप पत्रकार दूसरों के दुख दर्द के किस्सों से खासी कमाई कर लेते हैं तो मैं भी अपने दर्द की कीमत क्यों न लूं।
3: बेशक लीजिए, बस आप में और मुझे फर्क इतना है कि पैसों में आपकी अप्रोच सेंटिमेंटल है और मेरी बिजनेस लाइक। एनीवे तो मिसेस कुंतल अब मेरे सवाल का जवाब देंगी आप।
0: ओह यस, आपका सवाल। अच्छा मिस्टर रॉबर्ट, आपको तो मालूम ही होगा कि मिस्टर कुंतल विदेश में किस साइंटिफिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे।
3: जी हाँ, मेरे पास उनका कंप्लीट बायोडाटा है। मिस्टर कुंतल जिस देश में काम कर रहे थे उस देश के स्पेस रिसर्च और सैटेलाइट डिफेंस से संबद्ध थे। मुझे ये भी मालूम है कि एटॉमिक वॉरहेड से लैस सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाले ब्लॉक हाउस के 13 नंबर के कंट्रोल रूम के वे इंचार्ज थे।
0: हो तब तो आपको ये भी मालूम होगा कि किस घटना के बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया।
3: जी हाँ, मुझे संक्षेप में मालूम है कि जिस समय बृहस्पति ग्रह की स्पेस फ्लाइट को वो मॉनिटर कर रहे थे उस समय कुछ अनहोनी घटना घटी। वो क्या थी और उसे क्या

0: रिएक्शन हुआ और वो क्यों रिजाइन कर बैठे, ये सब एक मिस्ट्री है। वो चूंकि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी जो मुझे नहीं मिल पाई, इसीलिए मुझे आप लोगों तक आना पड़ा। आखिर सवाल तो यह है कि वो क्यों रिजाइन कर बैठे।
1: हाँ, उसने रिजाइन कर दिया था और चलाया, ठीक किया।
0: सवाल तो यह है कि वो क्यों ठीक है।
1: वो इसलिए ठीक है मिस्टर रॉबर्ट कि कुंतल नरसंहार की योजना में अपने को हिस्सेदार नहीं बना सकता था।
0: नरसंहार? मैं कुछ समझा नहीं।
1: जी हाँ, नरसंहार। जिस देश में विज्ञान विवेक शून्य हो, जहां ह्यूमन पर्सनैलिटी की सर्वोत्तम गुण भावना को रैशनैलिटी या गिलोटिन पर कुर्बान कर दिया जाता हो, और जो देश पल भर में समस्त संसार को ध्वंस करने वाले असलहों से लैस होते हुए भी बहुत से डरता हो, उस देश में क्या रहना।
0: तो क्या इसी वजह से आइंस्टीन, लुई पेरी और डार्विन की श्रेणी का वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा को सिर्फ सेंटिमेंटलिटी के लिए कुर्बान कर गया?
1: सेंटिमेंटलिटी, तुम लोग इसका महत्व क्या जानो? क्या विडंबना है कि जिसके घर में आग लगी हो वो आग लगाने वाली ईजादों में दीवाना हो रहा है।
0: ठीक है, लेकिन मिसेस कुंतल, मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर वो घटना क्या थी जिसने इतने बड़े वैज्ञानिक को ओवरनाइट परमहंस बना दिया।
1: बहुत अच्छे मिस्टर रॉबर्ट, वाकई कुंतल परमहंस बन गया।
0: मेरा सवाल है, आखिर क्यों?
1: हाँ, आपका सवाल। वाकया कुछ यूं हुआ मिस्टर रॉबर्ट की उस मनहूस शाम कुंतल को घर लौटने में देर हो रही थी। उस दिन बृहस्पति ग्रह के कक्ष में उसका सैटेलाइट पहुंचने वाला था।
0: ये उसी स्पेस फ्लाइट की बात है ना जो अधूरी रह गई थी?
1: हाँ, उसी की बात थी। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती। रात के 10 बज गए थे, कुंतल घर नहीं आया था। उसकी आदत थी उसे कई बार फोन करके याद दिलाना पड़ता था। उस रात जब फोन करते करते थक गई तो अपने बच्चे को सीने से लगाकर इंतजार करती रही। तभी फोन की घंटी से कमरा जैसे थरथरा उठा। हेलो, कौन? कुंतल?
2: सॉरी मौसी, मुझे बहुत देर हो गई।
1: कुंतल, अभी और कितनी देर रुकोगे?
2: कुछ कह नहीं सकता, आज स्विस क्राफ्ट बड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है।
1: तुम्हारा मतलब कोई फॉल्ट डेवलप कर गई क्या?
2: नहीं नहीं, फॉल्ट तो कोई नजर नहीं आ रही, रिले फर्स्ट क्लास आ रहे, मगर न जाने क्यों स्विस क्राफ्ट का व्यू बहुत घबरा रहा है।
1: इम्पॉसिबल, तुम्हारा मतलब स्पेस क्राफ्ट में जो अंतरिक्ष यात्री वो डर रहे हैं?
2: हाँ हाँ, कुछ ऐसी बात है।
1: कुंतल, तुम कुछ छिपा रहे हो, साफ सब कहो ना।
2: मैं फोन पर कैसे कह सकता
1: हूँ? तो सुनो कुंतल, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ?
2: नहीं नहीं, आज किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री एकदम बंद है।
1: कुंतल सुनो, तुम्हें तो कोई खतरा नहीं ना?
2: अरे पगली, मैं यहाँ जमीन पर हूँ, मुझे क्या खतरा?
1: अच्छा ठीक है, तुम फोन पर नहीं बताना चाहते मत बताओ। मैं तुम्हारे सीक्रेट टीवी इंस्ट्रूमेंट निकाल कर सारी स्पेस फ्लाइट मॉनिटर करती हूँ।
2: हाँ। नो नो वासवी, तुम्हें तो मत करना। तुम्हें मालूम है कि अगर उसके बारे में किसी को मालूम पड़ गया तो हम लोगों पर कितनी मुसीबत आ जाएगी।
1: ओह डोंट वरी, बाय।

0: Beetle speaking. Ground control. Hello, control. Control, over.
1: Ground control 30 is speaking. Hello, Beetle. Hello. तुम्हारी आवाज समझ पा रही है? Over.
0: Hello, ground control 13. Ground control 13. हमारे ग्राहक डंपिंग कर रहा है. Yes. We can't stand. Yes. Oh, मेरा सिर. I can't explain the phenomena. Crack जैसे किसी समुद्री जहाज की तरह इसको ले रहा है. Yes. Over.
1: Impossible. You are

चली गई। ये क्या हो गया स्पेसक्राफ्ट को? बकर कुंतल क्या कर रहा होगा? खबड़ा तो नहीं रहा होगा। मैं फोन करती हूँ।

0: Hello? Hello? Huh, Dr. Kuntal speaking. Oh, Vasvi. गजब हो गया वासु, कट ऑफ विद स्पेस कार्ट। क्या तुम मंडर कर रहे
1: हो? हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ, कुंतल के आखिर ये हुआ क्या? क्या होगा उन दो बेचारे स्पेस मैनों का कुंतल?
0: वरी नॉट डियर, सब ठीक होगा। हमारा कंट्रोल रूम सारा कंप्यूटराइज्ड है, कोई भी फॉल्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
1: हाँ और फिर वो तुम्हारा मानस पुत्र है ना यांत्रिक, वो सब ठीक कर लेगा, तुम्हारा भक्त है ना।
0: यू मीन मेरा रोबोट?
1: हाँ हाँ वही रोबोट जिसे तुम प्यार से यांत्रिक कहते हो।
0: मेरा प्यारा यांत्रिक, मेरी वैज्ञानिक उपलब्धि का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक, काश मैं उसमें जान डाल पाता।
1: हेलो कुंतल, ये आवाज कैसी आ रही है?
0: वास्तविक कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज तो ऐसा लगता है किसी रोबोट से आ रही है। वेट।
1: हाँ।
0: अरे ये क्या हो रहा है
1: कुंतल?
0: ये रॉबर्ट, ये कौन कह रहा है?
1: क्या
0: जैसे ये तो चलने लगा।
1: नहीं,
0: ये सत्ता है।
1: नहीं नहीं नहीं कुंतल, कुंतल हेलो कुंतल, कुंतल क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं है कुंतल?
0: रुको रुको, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ यांत्रिक, रुक जाओ, रुक जाओ।
1: हेलो हेलो
0: आगे बढ़ो
1: कुंतल। हेलो मैं कहता हूँ क्या हुआ?
2: डॉक्टर कुंतल, तुम्हारा एक भस्म अब मैं नहीं, तुम मेरा कहना मानोगे।

भगवान, ये क्या हो रहा है? रोबोट बोलने लगा, ये क्या चमत्कार है? कौतल पर क्या गुजर रही होगी? भगवान, कौतल को कुछ न हो, वरना ना मैं तुमसे भी लड़ने की ठान लूंगी। मगर पता नहीं इस दुर्घटना का समाचार कहीं लीक आउट ना हो गया हो। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा गजब हो जाएगा। ओह, मैं सरकारी का ट्रांसफर ऑन करूं, शायद उसमें कुछ हो।

0: अभी अभी मिले समाचार के अनुसार देश के अंतरिक्ष खोज केंद्र के कंट्रोल रूम से कुछ गंभीर तकनीकी गड़बड़ी के कारण बृहस्पति ग्रह की खोज से संबंधित अंतरिक्षयान अपने कक्ष में फंस गया है। एक समाचार के अनुसार कंट्रोल रूम में जो गड़बड़ी हुई है उसका प्रभाव देश की सुरक्षा से संबंधित उन सैटेलाइटों पर भी पड़ने की संभावना है जिसमें आणविक आयुधों से युक्त मिसाइलें लगी हुई हैं, जो उसी कंट्रोल रूम से संचालित हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार ये परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि समस्त विश्व के विध्वंस का संकट उत्पन्न हो गया है। पता लगा है कि राष्ट्रपति ने हॉटलाइन पर दूसरे बड़े राष्ट्र को चेतावनी दी है कि यदि उनके देश पर मिसाइलों से हमला होता है तो इसके लिए हमारा देश उत्तरदायी नहीं होगा, ये मात्र तकनीकी गड़बड़ी से होगा। अतः वे अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर लें। सरकारी तौर पर अभी इन समाचारों के विषय में कोई पुष्टि नहीं की गई है।
1: हे भगवान, ये क्या होने वाला है? भगवान, मेरे कुंतल की रक्षा करना।

0: गुड इवनिंग मिसेस कुंता, रुकिए, अरे रुकिए, आप भागती कहाँ जा रही हैं? अरे सुनिए तो,
1: क्या है मुझे मत रोको।
0: मिसेस कुंता, आज कंट्रोल रूम में कोई नहीं जा सकता।
1: नहीं मैं जाऊंगी, मुझे तो जरा रिश्ता आ गया है।
0: प्लीज देखिए आदर्श है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मिसेस कुंता रुकिए, वहाँ मत जाइए। रावत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसके हाथों में लेटर बीम गन है। अरे रुकिए, प्लीज रुकिए।
1: तुम ठीक तो हो ना?
2: मगर रुको रुको, तुम रॉबर्ट जिंदा हो गया है, उसके हाथ में लेसर बीम गन है। वो देखो पूरे वो घुमा तुम्हारी ओर। बचो बचो वासी वासी, हट जाओ भागो जल्दी यहाँ से भागो, हट जाओ।
3: ये कौन है?
2: ये मेरी पत्नी। मगर मगर तुम बोलने कैसे लगे? तुम
3: ये भी तुम्हारी देन है डॉक्टर कुंतल?
2: इम्पॉसिबल, तुम्हारे मैकेनिज्म में बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
3: तुम वैज्ञानिक नहीं मानोगे, तुमने लोहे के अस्थि पंजर से मेरा शरीर बनाया। दिमाग की जगह तुमने लाखों कंप्यूटराइज्ड याददाश्त के सेल लगाए।
2: मगर
3: तुम वैज्ञानिक इतने आराम तलब हो गए हो कि तुमने अपने सोचने विचारने का काम भी हमारी जैसी मशीन को सौंप दिया।
2: मगर तुम्हारा ही बोलना, नो नो, जस्ट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
1: क्या हो रहा है सर?
3: तुमने जब बेजान चीज से जानदार चीजों का काम लेना शुरू किया तो बेजान चीज है क्या जानदार चीजों की एक्टिंग नहीं कर सकती?
2: नहीं नहीं नहीं, तुम बोल नहीं सकते, कभी नहीं।
3: जो कि तुम्हारी वैज्ञानिक तराजू में ये बात तोली नहीं जा सकती।
1: बोल रहा
3: क्यों ना? मगर तुम क्यों भूलते हो कि विश्व में बने जितने भी रोबोट हैं, उनमें सबसे अधिक परफेक्ट और एडवांस रोबोट तुमने मुझे बनाया। तुमने हमारे शरीर में जो कंप्यूटराइज्ड मेमोरी सेल को एनर्जी देने के लिए बैटरी के आम प्रयोग की जगह बंदर का ब्रेन कनेक्ट किया, बोलो क्या गलत है?

0: सही है, मगर मगर तुम्हारा ये बोलना
1: मेरा बोलना वही बता रहा हूँ, मगर खबरदार अपनी पत्नी को बोलो कि कोई हरकत ना करे, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: वासवी प्लीज वासवी, भगवान के लिए को तुम यहाँ से नहीं जाओ। वासवी
1: इसे चल हटा दो।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और सुनो यांत्रिक, अब कुंतल से नहीं तुम मुझसे बात करोगे, समझे?
1: ना ना नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता।
2: क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे बात? तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी यांत्रिक। बताओ बताओ यांत्रिक, तुम्हें बोलने की ताकत कैसे आई?
1: डॉक्टर कुंतल, मैं कहता हूँ इस औरत को मेरे सामने से हटा दो।
2: कुंतल कुंतल, तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे इससे, मैं इससे निपटूंगी। यांत्रिक मेरे सवाल का जवाब दो, तुम बोलने कैसे लगे? यांत्रिक तुम बोलने कैसे लगे?
1: तुम्हारे पति ने हमारे लोहे की बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर अर्थात चेतन और जड़ पदार्थों की सीमाओं को इस कदर करीब ला दिया कि मुझमें एक स्वतंत्र आत्मा का जन्म हो गया। अगर तुम्हारे वैज्ञानिक पति को मेरी इस बात पर विश्वास न हो तो इससे कहो कि चारवाक का दर्शन पढ़े।
2: चारवाक का दर्शन? हाँ, वो क्या है?
1: चारवाक का दर्शन, जिसके अनुसार पंचभूत तत्व का जब एकीकरण होता है तो उसमें स्वतः आत्मा नामक गुण उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर कुंतल को यह क्रेडिट है कि इन्होंने चारवाक के दार्शनिक सिद्धांत को अपने विज्ञान से प्रत्यक्ष कर दिखाया है।
2: मगर तुम्हारे बोलने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। डॉक्टर कुंतल ने तुम्हें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि तुम बोल सको?
1: तुम वैज्ञानिक मेरी बात को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। मगर याद रखो, मेरे जन्म के साथ तुम्हारा आज का विज्ञान समाप्त हो चुका है।
2: क्या?
1: अब तुम्हारा कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में नहीं उड़ पाएगा। मानव कल्याण के नाम पर चंद वैज्ञानिकों के माध्यम से ये राजनीतिज्ञ विज्ञान का आगे दुरुपयोग करने लगे हैं, नहीं कर पाएंगे।
2: दुरुपयोग करने लगे? वो कैसे?
1: तो तुम इसका प्रमाण चाहती हो?
2: ऑफ कोर्स।
1: ठीक है, बाइबल में लिखा है कि जब तक आदमी अपनी आंख से नहीं देखता तब तक विश्वास नहीं करता। अच्छा अच्छा, तो लो देखो वो सामने क्या है?
2: टीवी स्क्रीन।
1: हाँ तो देखो।

0: आप सुन रहे थे नाटक मारीचिका। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र, श्याम सुंदर शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, अचला नागर, गंगानाथ चतुर्वेदी, राम नरेश पांडे, अनुराधा पांडे, राधा बिहारी गोस्वामी, रामकिशोर त्रिपाठी और श्रीमती विमल अरोड़ा। नाटक का आलेख तैयार किया था गंगानाथ चतुर्वेदी ने और प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर अचला नागर।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गजाधर पाठक का रुद्र वीणा वादन, राग है जोग।

अभी आप गजाधर पाठक का रुद्र वीणा वादन सुन रहे थे, राग था जोग। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: Hi.

0: इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajan were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala